मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज रविवार है, सत संवत 1948 की आषाढ़ मास की 7वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 28 जून 2026 सवेरे के ठीक 5:56 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण आरंभ होते हैं मंगल ध्वनि के साथ।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व

0: के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जिगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honor. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Ministry of External Affairs has issued an advisory to Indian citizens undertaking the Kailash Mansarovar Yatra through tours organized by private

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने सीमा मिश्रा और साथियों का गाया ये भजन।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। शिव बजकर 45 मिनट हुए हैं। कार्यक्रम सुने चिंतन।
1: आज का विषय है व्यक्तित्व का दर्पण। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा व्यक्तित्व अच्छा बने। पर्सनालिटी शब्द सामान्यतः एक बार रिपीट कर दो। आज का विषय है व्यक्तित्व का दर्पण। व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी साहित्य में पर्सनालिटी शब्द आता है और पर्सनालिटी का अर्थ किया जाता है मुखौटा। आज बाहर के मुखौटे को सजाने के लिए तो व्यक्ति के पास में अनेक साधन हैं और अनेक तरह के प्रयोग भी वह करता है, लेकिन बाहर का इम्प्रेशन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। सही व्यक्तित्व का निर्धारण और छवि बन सकती है जब भीतर का व्यक्तित्व अच्छा हो, और उसके लिए व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण बहुत कुछ जिम्मेदार होता है। आदमी को जिंदगी में वो नज़ारा चाहिए जो अंधेरा दूर कर दे, वह सवेरा चाहिए। प्रश्न है जिंदगी में वो सवेरा कैसे आए कि व्यक्तित्व का प्रभाव दीर्घकाल तक रह सके और ऐसा व्यक्तित्व हो जिसका अनुसरण युग अपने आप करना चाहिए। विधायक दृष्टिकोण इसके लिए एक आधार स्तंभ बन सकता है। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे घूम रहा था, देखा समुद्र की अथाह जल राशि को, भीतर में भी उस गहराई का, उस अथाह जल राशि का असर हुआ, भीतर की यात्रा में गोते लगाने लगा। लेकिन मनुष्य के पास में है रीजनल माइंड, तत्काल भीतर में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, तर्क उत्पन्न हुआ और उस रीजनिंग माइंड के आधार पर वह समुद्र को संबोधित करते हुए कहता है, समुद्र

0: कितना अच्छा होता तुम्हारे भीतर यह खारापन नहीं होता। समुद्र ने सुना, मौन रह गया। मनुष्य आगे बढ़ा, बगीचे में जाकर वृक्ष की ठंडी छांह में बैठा। कोयल का स्वर कानों में रस घोलने लगा, लेकिन वह रसवत्ता भी अधिक टिक नहीं सकी। भीतर से फिर तर्क उभरा और मनुष्य कोयल को संबोधित करके बोल उठा, कोयल कितना अच्छा होता यदि तुम काली नहीं होती। कोयल ने भी सुना, मौन रह गई। मनुष्य आगे बढ़ा, गुलाब के फूल के पास पहुंचा। रंग और गंध दोनों ही मन को लुभाने वाले, लेकिन वह लुभावनापन भी भीतर में ठहर नहीं सका। फिर एक प्रतिक्रिया भीतर में उभरी और मनुष्य बोल उठा, गुलाब कितना अच्छा होता यदि तुम्हारे नीचे ये कांटा नहीं होता। गुलाब ने भी सुना, मौन रह गया। मनुष्य थोड़ा आगे बढ़ा, अचानक वह देखता है प्रकृति के वे तीनों ही तत्व प्रतीकात्मक ढंग से उसके सामने आ रहे हैं। तीनों ने एक स्वर से कहा, मनुष्य हम भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मनुष्य थोड़ा झिझका, ये क्या बात हुई। भीतर से थोड़ा अपने को संतुलित किया, साहस बटोरा, बोलो क्या कहना है। तीनों ने एक स्वर से कहा, यद्यपि हम जानते हैं इस सृष्टि के सबसे शक्तिशाली प्राणी तुम्ही हो, रीढ़ की हड्डी सीधी तुम्हें मिली है, विकसित मस्तिष्क तुम्हें मिला है और इसके आधार पर ज्ञान विज्ञान की दिशा में अनेक नई शाखाएं तुमने प्राप्त की है, लेकिन मुझे हमें जो कहना है एक छोटी सी बात, कितना अच्छा होता यदि तुम्हारे भीतर दूसरों के दोष देखने की वृत्ति नहीं होती। मनुष्य ने सुना, मौन रह गया। यह मौन उस एक मनुष्य का मौन नहीं था।
1: अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:50 हुए हैं। आइए अब जाने कार्यक्रम विवरण के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेतिया नवास्ते। इसमें जानकारी आप लेंगे संतुलित खाद उर्वरकों का प्रयोग। 7:20 पर सुनेंगे कार्यक्रम मानस गान भाग संख्या 288। सुप्रभात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे मौसम और वस्त्र, खाली समय का सदुपयोग और बुरी आदतों से बचाव। 8:45 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम मरुमंगल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 9:10 पर। कलाकार होंगे भगत सहीराम। 9:30 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। सवेरे 10 आप सुनेंगे सदाबहार नगमे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे। और 11 आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे 12:05 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे 12:30 पर। खेत खलियान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। दोपहर 1:05 पर सुनेंगे महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे धरती की धड़कन है महासागर, हेयर फॉल रोकने के उपाय और मेडिटेशन कितना जरूरी है, सोयाबीन के व्यंजन। इस कार्यक्रम में आप ये जानकारी ले पाएंगे। दोपहर 2:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

नहीं, शाम 5 बजे। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे संगीत का महत्व, रेडियो का महत्व, उपभोक्ता संरक्षण, उस्ताद योजना और आज का इतिहास। इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। सराइकी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। शाम 7 बजे से आप सुनेंगे लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आप मैच समाप्ति तक सुन पाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ खास कार्यक्रम, उनके समय के बारे में जानकारी।

0: यह आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35वें संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रीय सभां संबोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमंत्री रोश कैमन इत्यत्र राष्ट्रीय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मंत्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः CETA इत्यस्यान्तर्गतं उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य

0: कक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदंडानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से

0: सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदायु किमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche-Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a 3-day visit to the Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, will officially launch the PM Family Care Tracker pilot project in Gandhinagar this evening. This new initiative is aimed at improving health care tracking and welfare accessibility for families. Earlier in the day, Mr. Shah will attend a special Chintan Shivir for booth presidents and Shakti Kendra in charges in Ahmedabad, during which he will review grassroots strategies and interact with local party members. The Ministry of External Affairs has issued an advisory to Indian citizens undertaking the Kailash Mansarovar Yatra through tours organized by private tour operators. In a statement, the ministry said it is in receipt of several requests for help and assistance from Indian citizens stuck in Nepal while undertaking Kailash Mansarovar.

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:10 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं खेतिहर आवाज़ से। इसमें जानकारी आप ले रहे हैं संतुलित खाद उर्वरकों का प्रयोग।

0: संतुलित खाद उर्वरकों का प्रयोग, अभी आपने जानकारी ली कार्यक्रम खेतिहर अवस्थे में। आइए अब सुने लोक भजन।
1: साजल फूल गुलाब रोई गुलाब रो तुम्हें फूलने की बास साज

इसी लोक भजन के साथ ही आज का खेती रिवाज का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये कॉटन सीडी चैनल सूरतगढ़ है। 7:20 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने मानस कान भाग संख्या 288।

रावण की आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ, किंतु कपड़ा लपेटते, घी तेल लगाते हनुमान की पूंछ लंबी होती गई। नगर के भंडार खाली हो गए। नगर में घुमा फिराकर जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान ने लघु रूप धारण किया और अटारियों पर जा चढ़े। 49 पवन चले, पवन पुत्र जैसे आकाश छू रहे हों। सारा नगर धू धू कर जल उठा। नगरवासियों में त्राही त्राही मच गई। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जिन्होंने अग्नि की रचना की, हनुमान उन्हीं के दूत थे। स्वयं उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उलट पलट कर हनुमान ने सारा नगर जला दिया और तब जाकर समुद्र में कूद पड़े। तत्पश्चात वे सीता के सम्मुख उपस्थित होते हैं।

0: अभी आप मानस गान भाग संख्या 288 सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का गॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 7:30 हुए, आइए कार्यक्रम सुने सुप्रभात।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री।
0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भगवान सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, बात करें मौसम और वस्त्रों के। ये हम सभी जानते हैं कि मौसम के अनुसार कपड़ों का चुनाव और शरीर को आरामदायक रखने, तापमान को नियंत्रित करने और सुरक्षित रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर मौसम में अपनी अलग मांग होती है, जिसके आधार पर फैब्रिक यानी कपड़े का चयन हम करते हैं। अभी गर्मी का मौसम, साथ में बारिश का मौसम भी है और इस समय शरीर को ठंडा रखना, पसीना सूखना और धूप से बचाव, ये प्रथम आवश्यकता है। इस समय हम कॉटन बेस जो भी कपड़े हैं या जो भी वस्त्र है वो पहन सकते हैं। रियॉन ये हल्के और हवादार होते हैं। यानी इस समय सूती वस्त्र जो है हम पहन सकते हैं और ढीले ढाले कपड़े जैसे टी शर्ट हैं, कुर्ती या सूती पायजामा वगैरह हम पहन सकते हैं। खास तौर पर इस समय हल्के और सफेद रंग जो धूप को परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं, वैसे हमें कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग के कपड़े हम पहन सकते हैं। और इसी तरह अगर सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी की हम बात करते हैं कि उस समय उस तरह के कपड़े हम पहनते हैं। बरसात का मौसम की अगर हम बात करें तो नमी यानी ह्यूमिडिटी से बचना और कपड़ों को जल्दी सूखने वाला होना चाहिए। पॉलिस्टर, नायलॉन और हल्के सिल्क ये सबसे अच्छे कपड़े इसमें माने जाते हैं। श्रोताओं, ऐसे कपड़े में जो पानी पड़ने पर भारी न हो और जल्दी सूख जाए, फुल लेंथ भारी पारंपरिक

कपड़े और इसके बजाय छोटे या घुटने तक के कपड़े पहनना सुविधाजनक है। और आगे बसंत का मौसम आ रहा है, उस समय दिन में गर्मी और शाम को हल्की ठंड, इसलिए बहुमुखी कपड़ों की हमें ज़रूरत होती है। और सबसे अच्छे कपड़े यानी मध्यम वजन के सूती कपड़े या हल्के ब्लेज़र उस समय हम पहन सकते हैं। और श्रोताओं, वस्त्र जो भी हम पहनते हैं उसकी जो शैली है वो हमें हमारे जो व्यक्तित्व को भी बताती है। ऐसे कपड़े पहने जिसे आपका व्यक्तित्व भी दिखे, और मौसम के साथ तो हम उस तरह के कपड़े पहनते ही हैं। कपड़ों के चुनाव में अपनी गतिविधि जैसे घर पर आराम, वर्कआउट या ऑफिस जाना का भी ध्यान रखें, क्योंकि अलग समय में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, तो ये वस्त्रों का चुनाव जो है हम सही तरीके से हम कर सकते हैं। जिस भी मौसम में जिन कपड़ों की आवश्यकता होती है वो हम पहन सकते हैं। बात हम और भी करेंगे, आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, तो गीत आपने सुना, फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन, और इसे गाया था लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। गीतकार रविंद्र रावल और संगीत था राम लक्ष्मण का। आइए बात करें खाली समय का सदुपयोग हम कैसे करें। श्रोताओं, खाली समय का सदुपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे अपनी व्यक्तिगत वृद्धि यानी कि पर्सनल ग्रोथ, मानसिक शांति और रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले कार्यों में लगाया जाए। मोबाइल फोन पर समय बर्बाद करने की बजाय अगर आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, शारीरिक व्यायाम जो है कर सकते हैं, अपने खाली समय को सार्थक और उत्पादक बनाने के लिए आप नीचे दिए गए हम सभी बात जो भी हमने बात करी है वो हम करें कि जो हमारा समय है वो बड़ा मूल्यवान है। और जब भी समय, क्योंकि समय रुकता नहीं, वो निरंतर चलता ही रहता है, और अगर हम समय की कद्र नहीं करते हैं तो हम उस नीचे के स्तर को पा जाते हैं जिससे हमें नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए जैसे हमने बात की, नई और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने से आपका दृष्टिकोण व्यापक होता है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें। आप अगर जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे कोई नया कोर्स या नई भाषा, कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। यात्रा करते समय या आराम करते समय प्रेरक और ज्ञानवर्धक कोई ब्रॉडकास्ट हम सुन सकते हैं। और श्रोताओं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या में हम 15 से 20 मिनट का योग या शारीरिक व्यायाम हम कर सकते हैं जिससे हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और एक एकाग्र होकर हम कोई काम भी हम कर सकते हैं। प्रकृति के बीच समय बिताने से तनाव दूर होता है, इसलिए हम प्रकृति के बीच में रहें। और क्रिएटिविटी, जैसे हमने बात की थी, जो हॉबीज़ हैं आपकी, उसमें डायरी या ब्लॉग लिखना, उसमें अपने विचार भावनाएं लिखने से मानसिक तनाव कम होता है। पेंटिंग, स्केचिंग, गार्डनिंग या कुकिंग करके आप अपनी छिपी हुई प्रतिभा को भी निखार सकते हैं और अपने पसंदीदा गाने सुनना, मूड को तरोताजा करना सबसे बेहतरीन जरिया है, क्योंकि संगीत ऐसा माध्यम है जिससे कि हमारा जितना भी मानसिक तनाव है वो दूर हो जाता है। और जैसे जैसे हम घर के कुछ काम भी, हम छोटे मोटे काम भी हम कर सकते हैं जिससे हमारा मन लगा रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रोताओं की, जो भी अगले दिन की दिनचर्या है उसे हम पहले सोच कर रखें कि अगले दिन हम

क्या करेंगे, उसका एक शेड्यूल हमें बनाना चाहिए जिससे कि हमारा जो समय प्रबंधन है वो सही तरीके से हो सके और काम जो हम करना चाहते हैं वो भी सही समय पर हो जाता है। और जब भी आपको खाली समय मिले तो स्क्रीन पर बेवजह स्क्रॉल करने से बचें, यानी कि फ़ोन जो हम देखते हैं, रील्स वगैरह हम देखते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। अपने लिए एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाएं और उस काम को चुनें जो आपको मानसिक खुशी या कोई नया ज्ञान दे। तो जाहिर सी बात है श्रोताओं कि जो जो भी हम काम करेंगे और खाली समय में आपको लगे कि कोई काम करना है तो उसका सदुपयोग अगर हम करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। बात हम और भी करेंगे, आइए सुनते हैं ये गीत।

दूध और लोह मैं तज कर जा सकता हूं, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता।

श्रोतम, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम भूतनाथ, और इसे गाया था हरिहरन और सुखविंदर सिंह ने, और इसकी धुन तैयार की थी जावेद अख्तर ने, और संगीत विशाल शेखर का था। आइए श्रोतम, बात करें बुरी आदतों से बचाव। बुरी आदतों से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो है पहचान, संकल्प और प्रतिस्थापन, यानी कि रिप्लेसमेंट। उस आदत के ट्रिगर यानी संकेत को पहचानें, उसे छोड़ने का मजबूत मानसिक संकल्प लें, और उस आदत के समय किसी अच्छी गतिविधि या शौक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बुरी आदतों से सफलतापूर्वक बचने और उन्हें छोड़ने के लिए हम एक प्रण कर सकते हैं, एक योजना बना सकते हैं। ट्रिगर यानी संकेत को पहचानें, समझें कि आपको वह बुरी आदत क्यों लगती है, जैसे तनाव, बोरियत या किसी खास जगह पर जाना। पर्यावरण में बदलाव करें, अपने आसपास की उन चीजों को हटा दें जो आपको बुरी आदत की ओर ले जाते हैं। अच्छी आदत से बदलें। प्रकृति खालीपन पसंद नहीं करती। जब भी आपको बुरी आदत करने की इच्छा हो,

बदले बदलें और कोई अच्छी या रचनात्मक गतिविधि उस समय हम कर सकते हैं। योजना बनाएं, पहले से तय करें कि अगर मुझे सिगरेट पीने या फोन चलाने की तलब होती होगी तो मैं उस समय उसकी बजाय 5 गहरी सांसें लूंगा और पानी पीऊंगा। सहायता मांगे अपने परिवार, दोस्तों या किसी जो आपका साथी है, अपने लक्ष्य के बारे में बताएं ताकि वे आपको उसके लिए प्रेरित करेंगे। श्रोता, मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी आदत को बुरी तरह से छोड़ने के लिए धैर्य और खुद के प्रति दया भाव यानी कि सेल्फ कंपोजिशन रखना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी खास लत जैसे धूम्रपान या शराब से परेशान हैं तो इसे छोड़ने के लिए हमें एक प्रण करना होगा, अपनी पूरी जिम्मेदारी से। हमें लगता है कि हमें पता भी है कि वो नुकसानदेह है, तो आप उस चीज़ के लिए एक प्रण लें यानी कि एक एम बनाएं कि हम मैं इस चीज़ को जल्दी ही छोड़ पाऊंगा या छोड़ दूंगा, क्योंकि अचानक तो ये नहीं होगा, धीरे धीरे इसको आप छोड़ पाएंगे। तो बुरी आदतें जो हमारे घर के लिए या समाज के लिए भी अच्छी नहीं है, खुद के लिए तो खराब है ही है, तो अच्छी आदतों का हमें अपने अंदर प्रवेश करवाना चाहिए। अच्छे साथियों का संग करें तो ये जो बुरी आदतें हैं या जो आपकी जल्द छूट सकती है। बात हम और भी करेंगे, पहले सुने ये गीत।

0: श्रोताओ, गीत आपने सुना आदमी खिलौना है फिल्म से, और अलका याग्निक साथियों की आवाज़ में गीत आपने सुना। इसी के साथ ही ये सुप्रभात कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 8 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
3: Today we have a new national health policy.
4: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है।

0: जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
2: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
6: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता

0: को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर

0: में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Once again, Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Seychelles Patrick Hermini today to also address Seychelles National Assembly and interact with members of Indian diaspora. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. US military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at US Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ारत-ए-खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेनेजुएला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1430 हो गई है। बचाव टीमें अब भी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा शराकतदारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और बाहमी मुफादात के इलाकाई व बैन अल-अक़वामी मामलात पर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी रोश कैमन में कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजारत ने बताया कि भारतीय दिफाई अफवाज का एक दस्ता भारतीय बहरिया के दो जहाजों के साथ इन तकरीबात में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के तीन रोजा सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करेंगे। यह दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती को तकवीत देगा और तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दोतरफा ताल्लुकात के मुश्तरक अज़्म को फरोग देगा। नई दिल्ली से आकाशवाणी के लिए अक्षित विद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोटेनिकल गार्डन्स का दौरा किया और शजरकारी की एक तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने बोटेनिकल गार्डन में जायंट टोर्टाइज इनक्लोजर का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म सेशल्स के अपने तीन रोजा दौरे पर कल विक्टोरिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हुए नेपाल में फंसे हुए भारतीय यात्रियों की मदद की दरखास्तें मौसूल होने के बाद जारी की हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: वजारत खारजा ने कहा है कि कुछ भारतीय शहरी निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हो गए, लेकिन

0: वो चीन में दाखिल होने के लिए लाजमी वीजा और एंट्री परमिट हासिल किए बगैर नेपाल पहुंच गए। इसके नतीजे में कई यात्री नेपाल में फंस गए और उन्होंने वजारत खारजा से मदद तलब की। वजारत ने यात्रियों को हिदायत दी है कि वो तमाम सफरी दस्तावेजात और इजाजतनामों की तस्दीक के बगैर सफर शुरू ना करें, क्योंकि ज़रूरी इजाजतनामे हासिल होने से पहले रवानगी सफर के दौरान मुश्किल का बायस बन सकती है। वजारत ने यह भी कहा कि यात्री रवानगी से कबल इस बात की ज़रूर तस्दीक कर लें कि उनका टूर ऑपरेटर बाकायदा रजिस्टर्ड और मजाज है। वजारत खारजा की इस हिदायत का मकसद यात्रियों के लिए महफूज, आसान और बिला रुकावट रूहानी सफ़र को यकीनी बनाना और उन्हें गैर ज़रूरी परेशानी से महफूज रखना है। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
1: उमूर दाखिला और इमदादी बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज शाम गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रेकर आजमाइशी प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस नए इकदाम का मकसद खानदानों के लिए सेहत की निगरानी के निज़ाम को बेहतर बनाना, नीज सेहत और फलाही खिदमत तक उनकी रसाई को मजीद आसान बनाना है। जनाब अमित शाह अहमदाबाद में बूथ सुदूर और शक्ति केंद्रों के इंचार्ज के लिए मुनक़िदा खसूसी चिंतन शिविर में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो ज़मीनी सतह पर तंजीमी हिकमत अमली का जायजा लेंगे और मकामी पार्टी वर्करों से भी बातचीत करेंगे। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 बरसों में सेहत की देखभाल में नुमाया पेशरफ्त की है और वो हर शहरी के लिए काबिल रसाई किफ़ायती और मेयारी सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने और आलमी सेहत की कवरेज के वसी तर हदफ की सिमत काम कर रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के नौवें एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के मरकज में रोकथाम के साथ अपनी सेहत के नुक्ते नज़र की बीमारी की देखभाल से तंदुरुस्ती और मुकम्मल तौर पर इलाज मौलजे से जामे सेहत की देखभाल की तरफ मुंतकिल कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वाले 6 जांबाज फौजियों की अजीम कुर्बानी का सरकारी तौर पर पहली बार हाल ही में एतराफ़ किए जाने से मुतालिक मीडिया और सोशल मीडिया के बाज हलकों में गर्दिश करने वाली खबरों पर वजारत दिफा ने अपनी वजाहत पेश की है। वजारत ने इन खबरों को हकायक के मुनाफी करार दिया। वजारत के मुताबिक मुल्क ने शहीदों को अव्वलीन मौके पर खराज अकीदत पेश किया था। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO ने गुज़श्ता बरस 11 मई को मुनक़िदा सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 6 शहीदों को खराज अकीदत पेश किया था। वजारत ने मजीद बताया कि इन शहीदों को बहादुरी के एजाजात भी अता किए गए थे, जिनका ऐलान गुज़श्ता बरस 14 अगस्त को एक प्रेस रिलीज में किया गया था। वजारत ने मजीद कहा कि भारतीय फौज के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी इन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया था। वजारत दिफा ने कहा कि शहीदों के नाम तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नेशनल वार मेमोरियल पर कुंदा किए जाते हैं और ये कहना कि मुकर्रा प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया हकाइक के खिलाफ है। उसने मजीद कहा कि इस तरह के गुमराहकुन इतलात न सिर्फ हकाइक को मस्ख करती हैं बल्कि शहीदों के अहले खाना के लिए गैर ज़रूरी तकलीफ का बाइस बनती हैं। इसके साथ ही वतन के लिए अजीम कुर्बानी देने वालों के वक़ार को भी मुतासर करती हैं। वजारत ने तमाम शराकतदारों से अपील की है कि शहीदों से मुतालिक खबरों की शात में जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा करें और गैर मुसद्दका मालूमात की तशहीर से गुरेज करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी फौज ने कहा कि सदर ट्रंप की हिदायत पर उसने लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान नाजुक जंगबंदी एक बार फिर दबाव का शिकार हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फौजी तैयारों ने ईरान के फौजी निगरानी के निज़ाम, मौसलाती निज़ाम, फिजाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन मराकज और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी फौज के मुताबिक ये कार्रवाई जुमे के रोज़ एक तजारती बहरी जहाज पर होने वाले हमले के जवाब में की गई। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी फोर्सेस ने कीकुनामी तेल बर्दार जहाज पर एकतरफा ड्रोन से हमला किया। ये जहाज आबनए हुरमुज से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से ज्यादा खाम तेल मौजूद था। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान के पास जंगबंदी मुआहदे की पासदारी का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी फोर्सेज ने कीकू ऑयल टैंकर पर हमला किया। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इतला दी है कि आबनए हुरमुज के

0: शुमाल में वाकई एक इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। इमदादी टीमें अब भी मलबे तले दबे लोगों की तलाश में मसरूफ हैं। यहां बुध के रोज 7.2 और 7.5 की शिद्दत के दो ताकतवर जलजलों ने जनूबी अमरीका के इस मुल्क में वसी पैमाने पर तबाही मचाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वेनेजुएला की हुकूमत ने कहा है कि जलजलों के तीन दिन बाद भी 68,900 लोग लापता हैं। इनकी गुमशुदगी की इतला उनके अहले खाना ने दी है। कौमी असेंबली के सदर जॉर्ज रोड्रिग्स ने कहा कि हजारों इमदादी कारकुन रात दिन मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वेनेजुएला के जलजले से मुतालिक मुतालियात की फाउंडेशन फुन विसिस ने इतला दी है कि वेनेजुएला के वस्ती इलाकों में 4.1 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। सरकारी इदारे ने बताया कि इस जलजले का मरकज मुल्क के अहम वस्ती साहली शहर लागुएरा से तकरीबन 35 किलोमीटर मगरिब में था। बुध के रोज आने वाले दो ताकतवर जलजलों से हुए बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद इस इलाके को आफतजदा जोन करार दिया गया है। इदारे के मुताबिक जलजला सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसकी वजह से जमीन ज्यादा शिद्दत से लरस गई और ढांचा जाती नुकसान भी ज्यादा हुआ। जलजले के माहरीन मुतासरा इलाके पर करीबी नजर रखे हुए हैं, जबकि फुन विसिस भी दिन रात निगरानी का काम जारी रखे हुए है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने खबरदार किया है कि जो कोचिंग सेंटर लाजमी हिफाजती उसूलों पर अमल नहीं करेंगे, उन्हें दिल्ली में कोचिंग सेंटर चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत जाब्ता जाति कानून मुतारिफ कराएगी, ताकि कोचिंग सेंटरों की सख्त निगरानी, ज्यादा जवाबदेही और तलबा की बेहतर हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला ने तलबा से अपील की कि अगर उनकी कोचिंग सेंटर में हिफाजती इंतजामात में कोई कोताही या लापरवाही हो तो वो इसकी इत्तला ईमेल, मैसेज या फ़ोन के ज़रिए हुकूमत को दें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले ने मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत मकानात की फेरिस्त साजी और गिनती का काम 100% मुकम्मल कर लिया है। ऐसा करने वाला ये मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पहले अजला में से एक बन गया है। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहाँ तक पहुँच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकिलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में एक सख्त मुकाबले में जापान के खिलाड़ी युदाई ओकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
6: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म ने मोदी के सेशल्स पहुंचने की खबर को अव्वलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, सेशल्स बहर हिंद खित्ते में भारत की बहरी सलामती और खुशहाली की हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है। वज़ीर आज़म मोदी सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब भी करेंगे। इसी अखबार ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान को शह सुर्खी बनाया है, रिहाइश के लिए ज़रूरतमंद लोगों के इलाज और मकान का इंतज़ाम करेगी हुकूमत। रोजनामा इनकलाब ने अपने अंदरूनी सफ़े पर एक अहम खबर को शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मुल्क की पहली 8-लेन सुरंग खोल दी गई। इसी अखबार ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है,

0: ईरान के मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर अमरीका की बमबारी, तेहरान का जवाबी हमला।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और वहाँ मुकीम भारतीय बरादरी से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वह तमाम ज़रूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेंजवेला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1430 हो गई है। बचाव टीमें अभी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 8:45 हुए हैं। कार्यक्रम सुने सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सीमा मिश्रा और सुरेश वाडेकर के गाए कुछ भजन।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सीमा मिश्रा और सुरेश वाडेकर के गाए कुछ भजन।

0: इसी गीत के साथ ही आज का ये शुभ संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश का इंतजार करने की सलाह दी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर हर बार की तरह लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम के सामूहिक प्रसारण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भाजपा की ओर से पार्टी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण रखा गया है। प्रधानमंत्री आज सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल दोपहर विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति हरमीनी ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने सेशेल्स को हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त बताते हुए कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते और मजबूत होंगे। बालोतरा में पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इंतजामों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रिफाइनरी पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल तथा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था और किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए जिला प्रशासन के साथ HPCL भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है।
2: प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा, आगंतुकों के प्रवेश पास प्रोटोकॉल तथा अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कार्यक्रम का सफल एवं सुचारू संचालन किया जा सके। गौरतलब रहे कि रिफाइनरी का लोकार्पण पहले 21 अप्रैल को होना था, लेकिन उद्घाटन से एक दिन पहले एक यूनिट में आग लगने की वजह से वो कार्यक्रम टल गया था। करीब 90,000 करोड़ की लागत से निर्मित ये बीएस

0: सिक्स मानक की अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
1: वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों के चयन पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के सफल, सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक सत्यापन और मेटल डिटेक्टर जांच के साथ ही आवश्यक पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज पल्स पोलियो रविवार है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 3 दिन के इस राष्ट्रीय अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित 59,000 से अधिक पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि इस अभियान में मोबाइल और टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा देंगे। टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो के खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहाँ पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप पिलाएंगे, जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप आवश्यक रूप से पिलाएं।
1: गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। बीते 15 वर्षों में देश भर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरिस्का कभी बाघ पूरी तरह विलुप्त हो गए थे, लेकिन अब वहां 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्धार, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। इस बीच केंद्रीय मंत्री आज इस संबंध में अलवर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में बाघों के पुनर्स्थापन में योगदान और उल्लेखनीय सेवा देने वाले वनकर्मी, एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून पूर्व की बारिश और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। राज्य भर में कई स्थानों पर हल्की बारिश के बीच किसानों ने खेतों में खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि विभाग ने किसानों को बुवाई के लिए कुछ अच्छी बारिशों का इंतजार करने की सलाह दी है, जिससे जमीन में नमी बनी रहे। कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के प्रभारी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि किसानों को जल्दबाजी में बुवाई से बचना चाहिए।
3: तब हमने जब बिजाई करनी है तो उसमें ध्यान रखना है कम से कम हमारी 1 या 2 अच्छी बरसात हो जाए, तो उसमें क्या है कि हमारे जो जमीन की हीट निकल जाएगी, वरना अगर जमीन गर्म रहेगी तो हम कोई भी बिजाई कर देते हैं तो उससे हमारे जो बीज है उसके बीज की पैदावार कम होने का, बीज खराब होने के ना चांस बने रहेंगे। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जब तक बरसात अच्छी नहीं हो, अगर देसी भाषा में कहें तो 5-6 उंगल बरसात नहीं हो, तब तक ना किसानों को अब क्या बिजाई की तरफ नहीं जाना चाहिए।
1: इस बीच मॉनसून की गतिविधियां आगे बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के कई भागों में आज तेज बारिश तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली कड़कने और तेज हवा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को

हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। गौरतलब है कि देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले इन 6 जवानों में झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के सुरेंद्र मोगा भी शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में 1 करोड़ बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम में आए बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश के इंतजार करने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 9:10 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने मरुमंगल, कलाकार हैं भगत सही राम।

इसी लोकगीत के साथ ही आज का मरुमंगल कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने इस कार्यक्रम में भगत सही राम के गाए कुछ लोकगीत सुने। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने फिल्म संगीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी। इसे गाया था अलका याग्निक ने और गीतकार समीर थे, संगीत नदीम श्रवण का था। आइए अब सुने फिल्म जीत का ये गीत, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में, संगीत नदीम श्रवण का है और गीतकार समीर हैं।

आइए अब सुने अलका याग्निक और एम जी श्री कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सात रंग की सपने।

श्रोता, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम है एक रिश्ता। कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए सुने कॉलेज गर्ल फिल्म का ये गीत, अनुराधा पौडवाल सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। गीतकार इंदिवर हैं और संगीत बाबुल बोस का है।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दीदी,
8: आइए अब सुने गोपी किशन फिल्म का ये गीत कुमार सानू के अग्नि की आवाज में।

इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 10 बजे हैं। आइए कार्यक्रम सुने सदाबहार नगमे।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भगवान सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। रायण से बनवारी जयपाल, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी और डोईलोहरा बलोद छत्तीसगढ़ से संदेश हम तक पहुंचा है। बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष, विश्वजीत मंडी केसी सिंहपुर से ये संदेश पहुंचा है। रवि कुमार, राहुल, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से ये संदेश हम तक पहुंचा है। मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशा, शिवन्या, अनु गोस्वामी छत्तीसगढ़ से ये संदेश हम तक पहुंचा है। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु, तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा, राहुल, रचिता और बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से संदेश हम तक पहुंचा है। हयात कॉलोनी अरिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं आराधना फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: अंतराल के बाद स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। और ये संदेश हम तक पहुंचा है एटा रोड उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम और सरिता गौतम का। अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या, निवेश, नियति, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से ये संदेश हम तक पहुंचा है। और विक्रम, कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव, कुंदन, लीलाधर, कृष्ण मोयल, केडूराम जोया, हनुमान सहारण, सुनील पाईवाल, गांव कलाना, तहसील भादरा से ये संदेश हम तक पहुंचा है। रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, मोहम्मद वकार, फरीदी मोहम्मद, इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कोसर, मोहल्ला हलवयान, शेरकोट जिला बिजनौर से संदेश हम तक पहुंचा है। केसी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम, महेंद्र, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से संदेश हम तक पहुंचा है। सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रंजीत राम किरोड़ीवाल और अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति, पवनीत, विक्रमजीत ग्रोवर, आदर्श नगर बठिंडा से संदेश हम तक पहुंचा है। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर से संदेश हम तक पहुंचा है। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी हिमाक्ष। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म कस्मे वादे का ये गीत किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ में। आइए सुने ये गीत।

और ये पत्र हम तक पहुंचा है संदेश जगदीश राय गर्ग, मानसा पंजाब से ये संदेश पहुंचा है हम तक। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान, सबिया जुबेर, अंजुमन खान, सोनू रवि राज, गुलशन लक्की, जालंधर सिटी पंजाब से ये संदेश हम तक पहुंचा है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, कीरत हुजरे, रेहान शेख, और ये संदेश हम तक पहुंचा है उमरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद, निगहत शहनाज अब्बासी, सरफराज फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से पत्र विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मुणत। गांधीनगर गुजरात से जेके परमार, ज्योत्सना पवन परमार, हर्ष दीपाल, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से ये उमंग मलिक, आशंका मलिक और माही। दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, राजू प्रजापत, चौटाला हरियाणा से ये संदेश हम तक पहुंचा है। झोरड़ढाणी गांव बहलो नगर से नरेंद्र झोरड़, भीमसेन, लोकेश, गौरव, पुनीता, आरवी, करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा से संदेश हम तक पहुंचा है। प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत, करणवीर, दीपेंद्र, वीरेंद्र, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजीत का। बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी, बबली वर्मा। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संदेश हम तक पहुंचा है। गांव कल्याण मलका जिला बठिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म कटी पतंग का ये गीत। इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत आर डी बर्मन का है।

ईशन देशम तक पहुंचा है समतानगर गास्टी से लक्ष्मण जी, जगताप, श्रेया शिंदी, मानसी, निशांत, श्री कर्णपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू, कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसदीप, गांव 4M से ये संदेश हम तक पहुंचा है। मारहरा दरवाजा एटा से ये संदेश है नबी हसन, सहनाज, नवीद, सुहेल, अमन, यशफ और रसीद का। और अरलीगढ़ डवाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। लखवाली हेड से ये संदेश हम तक पहुंचा है मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकना राम। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। गांव ढाणी लाल खान, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां और जुनेद खान। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से संदेश है सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल। चक 5MD पतरोड़ा से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी, अंकु जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनीता जनागल,

और नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से संदेश है महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। और ये संदेश हम तक पहुंचा है पद्मा टाकीज़ नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। गांव हिपरसोगा, तहसील ओसा, जिला लातूर से ये संदेश है उस्मान शेख, सराना बानो, बाबा शेख, सिमर शेख, करिश्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार। और ये संदेश हम तक पहुंचा है रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। आइए आप सबकी

पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। गांव हिपरसोगा, तहसील ओसा, जिला लातूर से ये संदेश है उस्मान शेख, सराना बानो, बाबा शेख, सिमर शेख, करिश्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार। और ये संदेश हम तक पहुंचा है रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म धरती का ये गीत। गीतकार राजेंद्र कृष्ण है और संगीत शंकर जयकिशन का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। और ये संदेश हम तक पहुंचा है बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उमिला जायसवाल, दीपक, स्वाति। फाजिलका रोड मलोड पंजाब से कुलवंत सिंह गेल, जसवंत, रमन, बलजीत, दीक्षा, जगतार। और गांव व डाकघर निमानाबाद जिला जींद हरियाणा से संदेश है जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर गौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर। रामगंज खंडवा से संदेश है विजय मोहबिया, कविता मोहबिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब, साबिर, राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से संदेश हम तक पहुंचा है। और रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदनलाल वर्मा, ये लिखते हैं हमें नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से संदेश है। श्यामलाल, राजपाल, जयपाल, संदीप, चिमनलाल, मंडी के सिंहपुर संदेश हम तक पहुँचा है। गाँव लोहकगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरनाल सिंह, अभिराज। तहसील भादरा अनूप शहर से गजानन सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन, साहिल राघव, उमेश, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, मदन लाल शर्मा, फूसाराम, पंकज, हर शर्मा। हनुमानगढ़ से रजाक मोहम्मद, शमीम, इमरान, इरफान, जिसान खान। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से ये संदेश है जगदीश जुकिया, प्रमिला, ज्योति, सरिता, अमन, अमना, शैना और ईवा धारणिया। गांव मंडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। चंडीगढ़ से संदेश पहुंचा सतीश अनेजा, विमला अनेजा। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे। चक 5-15 पीएस से सरबजीत सिंह जौसन, सरबजीत सिंह जौशन, दो बार नाम इन्होंने लिख दिया, गुरमान सिंह, आदर्श पाल, रॉबिन सिंह। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अजनबी का ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: सर्जन? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

और ये संदेश हम तक पहुंचा है गांधी रंग गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और सिद्धार्थनगर दयापुर सांभली से बाबली से ये संदेश है गजानन नवदीप विश्वदीप अशोक, रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी, दिलीप कुमार, अगली दीवान मध्य प्रदेश से संदेश हम तक पहुंचा है पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धारा, फरसाराम, श्यामलाल घनश्याम, बाबू गौरी, ये संदेश हम तक पहुंचा है नोखा राजस्थान से और जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी लिखते हैं ये संदेश हमें आलोट जिला रतलाम से संदेश हम तक पहुँचे गांव खोखरा वाले श्री गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल विकास रोशनी और शगुन बरासा और साधु शहर से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मोहम्मद यासीन, नजमा, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर और मोहम्मद कलीम, नई बस्ती से ये संदेश हम तक पहुँचा है बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती चो अरोड़ा, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से संदेश हम तक पहुँचा है बागपत उत्तर प्रदेश से संदेश है संजय ढिंगिया, नमन आपार, प्रताप जनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया, गांव खारिया जिला सिरसा से संदेश हम तक पहुंचा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतल माला सुरलकर, आरती और भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमीरी कला झुंझुनू से संदेश हम तक पहुंचा है गांव नलोही तहसील शिवानी मंडी से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक, वेदांश, कवाई सालपुरा जिला बारां राजस्थान से संदेश सती श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से ही संदेश है प्रेम सहन मोनिका और मनीष सहन का। आइए आप सबकी पसंद पर

गांव जोगीवाला, श्री गंगानगर से प्रेम सारण, मोनिका मनीष सारण, सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श नगर सार्थक अलौकिक चंसोलिया, ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से संदेश हम तक पहुंचा है। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, जयदीप, राजदीप, राशि, श्रीमती शीतल, और ये पत्र हम तक पहुंचे हैं शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव, अमरप्रा पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन बंसीला, रेखा, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव, गांव लुदेसर पप्पू, रामघाट, देवीलाल, बलराज, रुचिका, साक्षी और जतिन, गांव मोहम्मदपुर, सोतर बुक फार्म रतिया से जीवन सिंह बुक्स, आंटी सिमरन, कौशल्या, मनकीरत, जशन, भूषण खेड़ा, गुरछिंदर बुक और बुक परिवार।

आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म अखियों के झरोखों से का ये गीत, हेमलता की आवाज़ में। गीतकार रविंद्र जैन है और संगीत भी रविंद्र जैन का है।

इस गीत को सुनना चाहा है भोला कॉलोनी गारोड़ा जिला करनाल हरियाणा से। ये संदेश हम तक पहुँचा है विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी गुंजन, साहिल वाणी जयजान, नौर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार बिहारी, शिव कुमार सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार, चंद्रशेखर कालू मिस्त्री, फिफाना नौर से जय सिंह धामू,

ये पत्र हम तक पहुंचा है श्री गंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह हरनीजा, दिनेश कुमार, नरेश कुमार शर्मा, गांव शेरगढ़ मालोट से शिवराज सिंह, हरप्रीत बलराज, बठिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, दादरीगढ़ भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं बेताब फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और सबीर कुमार की आवाज़ में।

इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सदाभर नगमे अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद।

हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है।

साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में

घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए

ये फुटसल एक नया नाम होगा, मैं आपको बताता हूं। फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है, इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर

वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। यह है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा

जमा होता है, कौन उसे साफ करता है? ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो

0: धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी

अभी कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम खेत खलियान सुनेंगे 12:50 पर।

बहनें अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दिन में 1:05 पर। इसमें आज आप जानकारी सुनेंगी, धरती की धड़कन है महासागर, हेयर फॉल रोकने के उपाय, मेडिटेशन कितना जरूरी है, सोयाबीन के व्यंजन।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे 2:30 पर, युवाणी कार्यक्रम आप शाम की सभा में सुनेंगे 5 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे संगीत का महत्व, रेडियो का महत्व, उपभोक्ता संरक्षण, उस्ताद योजना और आज का इतिहास।

सरायकी कहाँ से मैं रहेगा शाम 6:05 पर। जीरे की चिट्ठी कार्यक्रम आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे 6:40 पर।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण समय।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कभी हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जहाँ हम ठहर कर अपनी यादों, अपने सपनों और अपने प्रिय गीतों से फिर एक बार मिल सकें। आज का ये कार्यक्रम भी उसी आत्मीय मिलन का एक छोटा सा प्रयास है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन अच्छे गीत हर दौर में वही एहसास जगा जाते हैं। तो आइए मधुर संगीत से सजे इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब चारों ओर का वातावरण किसी जादू से कम नहीं लगता। हवा भी गुनगुनाती है, मौसम भी मुस्कुराता है और मन अनायास ही किसी की याद में खो जाता है। तो सुनते हैं एक ऐसा ही गीत। फिल्म का नाम जमीन आसमान, आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार अनजान और संगीत आरडी बर्मन का।

साथियों, सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि उस विश्वास से मिलती है जो किसी अपने का होता है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत वो होती है कि हमें ये एहसास दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं। हम सफर अच्छा हो तो रास्ते मुस्कुरा उठते हैं, पत्थर भी फूलों की तरह नजर आने लगते हैं। तो सुनते हैं कालिया फिल्म का ये गीत, आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की है। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत आरडी बर्मन का।

साथियों, यौवन प्रेम और प्रकृति का अद्भुत संगम जब संगीत में ढलता है तब हर धड़कन झूमने लगती है। प्रेम की पहली अनुभूति में सचमुच सारी दुनिया कुछ अधिक रंगीन दिखने लगती है। मुस्कुराहट की वजह पूछो तो बस इतना जान लेना, किसी की याद आज फिर दिल के करीब लाई है। तो सुनते हैं शर्मीली फिल्म का ये गीत, आवाज़ें किशोर कुमार लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है नीरज ने और संगीत एसटी बर्मन का।

साथियों, जीवन एक लंबा सफर है। इसमें संघर्ष भी है, विश्राम भी, आंसू भी है, मुस्कान भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन रुकना नहीं जानता। रास्ते मुश्किल सही, मगर चलते रहिए, मंजिलें खुद आपका इंतजार करेगी। सुनते हैं काला पत्थर फिल्म का ये गीत। आवाज़ें किशोर कुमार, लता मंगेशकर की है, गीतकार साहिर और संगीत राजेश रोशन का।

साथियों, आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं होती, वे भावनाओं की सबसे सच्ची भाषा होती है। कई बार जो बात होंठ नहीं कह पाते, आंखें

साथियों, आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं होती, वे भावनाओं की सबसे सच्ची भाषा होती है। कई बार जो बात होंठ नहीं कह पाते, आंखें चुपचाप कह जाती हैं। तेरी नज़रों में जो अपनापन दिखाई देता है, वो ही मेरी दुनिया का सबसे हसीन नज़ारा है। तो सुनते हैं धनवान फिल्म का ये गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की हैं। गीत के बोल साहिर के और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

साथियों, चलो फिर मुस्कुराते हैं, जिंदगी को गुनगुनाते हैं, हर नए पल का स्वागत करें, हर बीते पल का धन्यवाद करें, क्योंकि जो जीवन को प्रेम से जी लेता है वो ही हर दिन एक नया गीत रच लेता है। इसी के साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को समाप्त करने की लक्ष्मी को दें इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे गजल गायक जगजीत सिंह को।

श्रोताओं, आज सुगम संगीत में सुन रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें। तो सुनिए उनकी एक और गजल।

0: अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलियान।
1: राम राम। किसान भाइयों, कृषि उत्पादन प्रक्रिया में सिंचाई जल और उर्वरक दो बहुत महत्वपूर्ण आदान है। कृषि उत्पादन की एक टिकाऊ व्यवस्था का सागे सागे पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने खातर उर्वरकों को कुशल प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। फसलों की अच्छी बढ़वार और पैदावार के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत पड़े। मृदा में पोषक तत्वों की कमी होने पर उर्वरका शु अंगी आपूर्ति जकी है बापा कर्षका। भाई लोगो, उर्वरक जका है वे बहुत महंगा आदान मानी जाए। इन वास्ते अंगो जो को उपयोग है वो बड़ी कुशलता पूर्वक करना जरूरी है, क्योंकि उर्वरकों के उपयोग को पूरा लाभ जद ही मिल सके जद आने जरूरत के हिसाब से संतुलित और सही ढंग से अंगो प्रयोग करा। खेत से अधिक उपज लेने खातर उर्वरकों को संतुलन इन प्रकार करा का फसल की मांग और जरूरत के हिसाब से जका जरूरी पोषक तत्व है वे उपलब्ध होता रहे और माटी को जो स्वास्थ्य है वो भी सुरक्षित बने रहे। अब मौके पर देखा तो फसल और भूमि की जरूरतों के हिसाब से उर्वरक और जल को समुचित स्तर बनाए रखने के लिए फर्टिगेशन एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण प्रणाली है। बात करना फर्टिगेशन के बारे में तो फर्टिगेशन एक ऐसी प्रणाली है जका मा उर्वरक ने सिंचाई जल में मिश्रित करके सीधी पौधा की जड़ा तक पुगायो जाए। भाई लोगों, फर्टिगेशन से उर्वरकों की कम मात्रा में जल्दी से जल्दी कम और कम अंतराल पर पहला से नियोजित सिंचाई का सगापन देश का इस पौधा ने जरूरत

सूक्ष्म पोषक तत्व मिलता रहे और मूल्यवान जगह उर्वरक है बांगो, दोहन भी बहुत कम हुए। फर्टिगेशन का माध्यम से जल और पोषक तत्वों को सही समन्वय रख के फसलों की अच्छी पैदावार और गुणवत्ता सुनिश्चित कर सका। इस पौधा ने जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व मिल जाए और मूल्यवान जका उर्वरक है, ज्यादा महंगा जका उर्वरक है बांगो, दोहन भी बहुत कम हुए। उत्पादन में वृद्धि खातर गुणवत्ता युक्त फसल अपा लेस का इंग माध्यम से और इंग इस्तेमाल से छिड़काव विधि की तुलना में श्रम भी बहुत ज्यादा कम हुए। फर्टिगेशन में उर्वरकों का जो उपयोग है वो लगभग तरल रूप में ही करो जाए, पने शुष्क और दानेदार जगह उर्वरक है बंगो प्रयोग फर्टिगेशन का मां भी करियो जा सके। इमें शुष्क और दानेदार उर्वरकों को इस्तेमाल करने से पहला पानी में घोल बना गे और फिर अपा इन काम में ले सका। उर्वरकों के घोल ने फर्टिगेशन से पहला छानना जरूरी है, ये बात को पूरा ध्यान रखना है। और बूंद बूंद सिंचाई तंत्र का मां भी उर्वरक ने अपा अच्छी तरह छान गे और बिना काम में ले सका। अब इनका कई तरह का जगह फर्टिगेशन का फायदा है वे थन बता दूं। इस एक तो पौधा ने जरूरत के हिसाब से उर्वरक और पानी की सही मात्रा है वह मिल जाए, जमीन के अंदर जो को प्रदूषण है वो भी बहुत कम हुआ है फर्टिगेशन की वजह से, और फसल ने जरूरत के हिसाब से ही पोषक तत्व जगह है व्यापार निर्धारित करके देश का भाई लोगों फसल की वृद्धि और उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी आप इसे प्राप्त कर सका। फर्टिगेशन का और भी कई फायदा है जहाँ उर्वरक और पानी सीधा पौधे की जड़ा तक पहुंचा सका। घुलनशील उर्वरक और रसायनों को समुचित प्रयोग इन वजह से हुआ है। मिट्टी का अलग अलग उर्वरकों की सहचलता के हिसाब से उर्वरक ने खेत में आप नाक सका। भाई लोगों फर्टिगेशन उर्वरक देने की जी की सुरक्षित विधि है, इस पौधा की जड़ा ने की भी तरह की कोई हानि को नहीं होनी। इन अलावा फर्टिगेशन के द्वारा जी की ड्रिप सिंचाई करके आप बंजर भूमि है बिना उपजाऊ बना सका और अच्छी फसल प्राप्त कर सका। अलग अलग उर्वरक ने अलग अलग मात्रा में आपने निर्धारित करके और बिंग हिसाब से भूमि में नाक सका। इन अलावा और भी कई फायदे है जहाँ पौधा ने सही मात्रा में पानी मिल सके और इंग सागे पानी जो है वो भूमि में चारों ओर इन्हें बिना खिंडे कोनी और कई तरह की जगह खरपतवार है बेबी पैदा कोनी होनी जिस क्या पौधा ने पोषक तत्वों की भी तरह कोई कमी जी है वह कोनी रहनी। अब बात करा फर्टिगेशन का मां कई सावधानियां रखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिया उर्वरक ने मिलाता टेम बंगी संगति के हिसाब से ही बंगू मिश्रण जो है वो अपने तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सावधानी ना रखेंगे तो बिना कई फायदा जगह होने के बजाय अपने नुकसान भी हो सके। तो ये वास्ते जब भी आप उर्वरक जगह मिलाओ तो बाकी संगति जकी है बाकी किस्म जकी है बिंगो अपन पूरा ध्यान रखना जरूरी है, फिर ही अपन मिश्रण जो है वो तैयार करना चाहिए। इस क्या है कि एक तो आपस में रासायनिक क्रिया जकी है बा कोनी हुए नहीं, कई बार आप ऐसा उर्वरक आपसरी में मिला देवा जबकि जैसे रासायनिक क्रिया करके अरबे कोई अलग से कोई रसायन तैयार कर देवे, तो अपन इन बात को पूरा ध्यान रखना है। और बढ़िया तरीके से अगर आप मिश्रण तैयार करांगा तो बीच में अपनी जो फसल है बढ़िया पैदा होगी और अपने ज्यादा फायदा होगा। भाई लोगों उर्वरकों को जो विलय है घोल जो को है बनाने के लिए उर्वरकों को मिश्रण पहला से अपने तय करना जरूरी है और बिंगो जो को अनुपात है वो सही होना जरूरी है। सल्फेट और फास्फेट युक्त जका उर्वरक है बने कैल्शियम युक्त उर्वरक के साथ मिश्रित कदे नहीं करना चाहिए, इन बात को पूरा ध्यान रखना है। और इन अलावा अपन धीरे धीरे जकी रासायनिक खेती है बिंगो थोड़ा सा जो को तरीको है वो अब धीरे करना पड़ेगा धीमो करना पड़ेगा, और अब जैविक खेती जकी है बापा करांगा तो बीच क्या का आपने जो को रासायनिक तरीको है वो छूट जाएगा और आपने जो फसल है वह बढ़िया और बेहतर होगी। भाई लोगों अब रासायनिक जो को तरीको है वो इतो ज्यादा दूषित हो गयो कि बिंग वजह से खाद्यान्न जो को पैदा कर ला रहा हाँ जो को अन्न आप पैदा कर ला रहा हाँ वो भी जहरीलो हो गयो। तो अब जैविक खेती अब धीरे धीरे अपनानी शुरू कर दो, एक बार थोड़ा सा कम रकबा में आप शुरुआत कर दो बी बाद में धीरे धीरे बिंग बढ़ोतरी आप करता रहा बीच क्या है कि एक तो खाद्यान्न जो है वो साफ सुथरो और शुद्ध पैदा होगा और दूसरी बात है कि बीच पर्यावरण भी नाश को नहीं होनी। आप कई बार रसायन छिड़का तो अपना रसायन जो है वो पूरा पर्यावरण ने नुकसान पुगावे अपने जीवन ने भी नुकसान पुगावे और इनके अलावा माटी जकी है वह भी दूषित होने ला रही है। अब देखे कि नानी आप माटी के अंदर कठोरपन आने ला रहे है, माटी के अंदर कई तरह जगह सोरा है वे भी देखने मिलन ला रहा है, फसलों जकी है भी अपनी माड़ी होने ला रही है। कई बार आप इसी किस्म बिजांत कर देवा जकी किस्म अपनी भूमि मानने ही कोने नहीं, तो ये मोटा सा कारण इंगी वजह से है कि आप माटी को जो को नाश है वो बहुत ज्यादा कर दियो, माटी में पानी धारण करने की क्षमता बिल्कुल खत्म होगी, माटी के मांझ की उर्वरा शक्ति है वह भी बिल्कुल खत्म होगी। तो आप धीरे धीरे जैविक खेती अपनावा और जैविक खेती से अपनी जिकी फसल है अपनी जिकी माटी है बिना भी बचाना जरूरी है, आने वाली जिकी पीढ़ी है बिना भी बचाना जरूरी है। और इन अलावा थाने बता देवा अब इसी बहुत सी किस्म याद कर रखी है जिकी किस्म अपने कम रासायनिक छिड़काव की वजह से भी बढ़िया बेहतर अपा ले सका। और इंग सागे सागे पानी बचाना भी जरूरी है क्योंकि बिना पानी थान ध्यान ही है के जीवन है और के फसल है कुछ भी कोनी बनी, तो अब पानी बचावा सा और पानी बचा के अपनी जिकी फसल है बिंगी पैदा

0: पर बढ़ावा। और इंग सग सग अपन इन बात को भी ध्यान रखना है कि अब जका कीटनाशक अपन कीट नियंत्रण खातर छिड़कन ला रहे हैं तो बे क्या है कि अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम कर देवा और बिंग जगह को जैविक जो को नियंत्रण है वो अपना लेवा। बहुत सा ऐसा तरीका है जहाँ आपने नीमनाशी को प्रयोग कर सकें अपा और इनके अलावा ऐसा रसायन अपा जका जैविक तरीका है बन अपना आगे तैयार कर सकें जगह की वजह से ना तो कोई अपना मित्र कीट खत्म हुए ना अपनी भूमि नाश हुए ना पर्यावरण दूषित हुए। तो ये बातें ध्यान में रख के अपना अपनी जी भूमि भी बचानी है अपनों खाद्यान्न है वो भी बचानो है अपनों आने वाले जो को जीवन है वो भी बचानो है। जे अपना फसल चक्र अपना आगे अगर खेती करा तो अपनी जी भूमि की उर्वरा शक्ति अब भी कायम रहेगी और अपन की भीतरी कोई नुकसान भी कोनी हुए नहीं। और इन अलावा भाई लोग अपना ध्यान रखना है एक बात और गो कि अब पानी जो है वो भी अपन बचानो है और बचाना का जो तरीका है भी अपन अपनाना है जहाँ बूंद बूंद सिंचाई है या फिर जो कि फुहरा विधि है या फिर जो को पानी आप बरसात को इकट्ठो करे कर खेत का माँ को छोटो मोटो टांको बना ले होदी बना ले डिग्गी बना ले तो बीच क्या है पानी जो को अतिरिक्त अपना कन है भी पानी को अपने भंडारण करना है। और बूंद बूंद सिंचाई और फुहरा जो की विधि है ई शुक्र है कि पानी जो को है वो कम खपत हुआ है और अपनी जो फसल है बिना पूरा पूरा पानी मिल पीछे इनका और भी कई फायदे है जहाँ एक तो खरपतवार जो है वो भी कोनी बनी अगर खरपतवार कम होगा तो आपने ज्यादा खेचड़ कौन करनी पड़ेगी। और जब भी अपन पानी धानी लगावा तो अपने समतलीकरण जो है वो जरूर करना चाहिए और जगह खाड़ा सू या फिर आप बट बांध के पानी लगा ला रहे हैं तो बे साफ सुथरी होनी जरूरी है खाड़ो जो है भीतरी कचरो मचरो नहीं होना चाहिए साफ सुथरा रखना चाहिए कट्ठे भी पानी जो है वो लीकेज नहीं होना चाहिए। तो ये जी छोटी छोटी बातें हैं नहीं ये अपने पानी बचाने का माँ बड़ो सहयोग करे और अपने करना भी चाहिए। तो ये तरीका जगह है बे जरूर अपनाना है सा अपना हूँ खेत का नहीं चालू राम राम सा राम राम।
1: श्रोताओं अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वर्षा काल के दौरान बारिश की एक एक बूंद को बचाने और कैच द रेन अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील करते हुए वोकल फॉर लोकल को अपनाने का आह्वान किया है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने जून महीने के दौरान देश की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है और देश आज समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने, कुछ समय के लिए सोना नहीं खरीदने और विदेशों में छुट्टियां मनाने से बचने के लिए बीते दिनों किए गए अपने आग्रह पर देशवासियों से मिले समर्थन पर

0: आभार जताते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि देश का हर नागरिक वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहा है।
1: मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें, कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूँ कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख करते हुए योजना की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी एक दूसरे तक साझा करने की अपील की। उन्होंने अंधविश्वास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर धारणाओं को बदलने को कहा। श्री मोदी ने एआई टूल्स को देश की संस्कृति तथा भारतीय ज्ञान भाषाओं के संरक्षण में काम लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। आकाशवाणी के इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम को सुनने को लेकर प्रदेश भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। राजस्थान सहित देश भर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 59,000 से अधिक बूथों पर ये दवा पिलाई जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मोबाइल और ट्रांजिट टीमें गठित की गई हैं जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा पिला रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री नरसिम्हा राव को 90 के दशक में वैश्विक संकट और मंदी के दौर में भारत को सुरक्षित रूप से बाहर रखने पर कुशल प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि देश के महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों पर चयन के लिए सुबह 11 से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों को अंकिता अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, महासागर हमारे ग्रह की जीवन रेखा है जो पृथ्वी की सतह से 70% से अधिक भाग को ढकता है और सभी जीवित प्राणियों को पोषण करता है। यह मात्र जल का विशाल विस्तार नहीं है, यह जीवन, प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत है। सदियों से महासागर ने सभ्यताओं को आकार दिया है, अन्वेषण को बढ़ावा दिया है और अपनी असीम सुंदरता और रहस्य से मानव कल्पना को प्रेरित किया है। यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए भोजन और लाखों लोगों की आजीविका प्रदान करता है। यह

हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और समुद्री जैव विविधता के एक जटिल जाल का समर्थन करता है। सखियों, हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। महासागर की रक्षा और पुनर्स्थापित करने की हमारी जिम्मेदारी को यह याद दिलाता है। यह दिन न केवल महासागर की भव्यता का उत्सव है, बल्कि हमारे जीवन का आधार बने रहने वाले जीव को बनाए रखने के लिए तत्काल सामूहिक प्रयासों की मांग है। बहनों, चर्चा जारी रहेगी, पहले सुनते हैं यह गीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: सखियों, महासागर मात्र जल का भंडार नहीं है, यह जीवन का आधार है। सूक्ष्म समुद्री पौधे फाइटोप्लैंक्टन विश्व की आधी से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिससे महासागर वास्तव में ग्रह के फेफड़े बन जाते हैं। लाखों लोग प्रोटीन के प्राथमिक स्रोत के रूप में समुद्री भोजन पर निर्भर हैं, जबकि तटीय अर्थव्यवस्थाएं मछली पकड़ने, पर्यटन और समुद्री व्यापार पर निर्भर करती हैं। लेकिन बहनों, आज महासागर संकट में है। इसका मुख्य कारण है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक कचरा समुद्री जीवों को जकड़ लेता है, समुद्री पक्षियों का दम घोट देता है और सूक्ष्म प्लास्टिक में टूट जाता है, जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर अंततः हमारे प्लेटों तक पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर महासागर को अधिक अम्लीय बना रहा है, जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार माने जाने वाले शंख, प्रवाल और प्लवक खतरे में पड़ रहे हैं। प्रदूषण, पर्यावास की हानि और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री प्रजातियां भयावह दर से लुप्त हो रही हैं। यह हमारा कर्तव्य है, यह महासागर को धरती की धड़कन है, इसको प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करें। प्लास्टिक उत्पाद का प्रयोग कम से कम करें। और इसी के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखी, आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या सी हो गई है। हर दूसरा व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा है। कई लोगों के बाल तो समय से पहले ही इतने झड़ जाते हैं कि उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर इलाज कराना पड़ता है। बालों का झड़ना जब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है तो गंजेपन की नौबत भी आ जाती है। सामान्यतः 50 से 100 बाल लगभग हर दिन टूटते झड़ते हैं। यदि इससे ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो गंजेपन की नौबत आती है। वैसे तो बाल गिरने की समस्या आमतौर पर 30 साल के बाद शुरू हो जाती है। पुरुषों में इस समस्या को मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं और महिलाओं में एंड्रोजेनेटिक एलोपीसिया को फीमेल बाल्डनेस पैटर्न कहा जाता है। इस समस्या से पीड़ित महिलाओं में पूरे सिर के बाल कम हो जाते हैं और पर हेयर लाइन पीछे नहीं हटती। सखियो, गंजेपन की अवस्था आने से पहले बालों का झड़ना रोकने के लिए घरेलू नुस्खों को आजमाने से सही परिणाम मिलता है। सखियो, बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि असंतुलित आहार, दवाइयों के दुष्प्रभाव, हार्मोन स्तर में आकस्मिक बदलाव, विशेषकर स्त्रियों में शिशु को जन्म देने के बाद या फिर 40 के पार हो जाने के बाद सिर की त्वचा में फफूंद संक्रमण होना, तो बीच बीच में से बाल झड़ने लगते हैं, लंबी बीमारी या किसी बड़ी शल्य क्रिया या सर्जरी, गंभीर संक्रमण या इन्फेक्शन और शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव या फिर वंशानुगत गंजापन। मौसम में परिवर्तन से भी बालों का झड़ना आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। सखियों, चर्चा तो और भी करेंगे, पहले सुन लेते हैं यह गीत।

सखियों, हम चर्चा कर रहे हैं बाल झड़ने रोकने के उपाय के बारे में। सखियों, झड़ते बालों को रोकने के लिए सबसे पहले तो संतुलित आहार लें, जंक फूड का सेवन कम करें, तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम की को अपने दिनचर्या में शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित धान्य तथा सूखे मेवे, दूध दही का सेवन करें।

रक्त प्रवाह में सुधार और बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए नारियल या अरंडी के तेल जैसे प्राकृतिक तेलों से अपने स्कैल्प की मालिश करें। हल्के सल्फेट मुक्त शैम्पू से नियमित रूप से धोने से भी आपके स्कैल्प साफ और स्वस्थ रखने में मदद मिलती है, जिससे बालों का झड़ना भी कम होता है। सखियों, अगर हेयर फॉल अत्यधिक हो रहा है तो किसी हेयर एक्सपर्ट से सलाह लें और चिकित्सक अनुसार दवाइयों का सेवन करें। सके शुरुआत में ही हेयर फॉल के इलाज से आप गंजेपन की समस्या से बच सकती हैं। और सखियों, इसी

हेयर एक्सपर्ट से सलाह लें और चिकित्सक अनुसार दवाइयों का सेवन करें। सके शुरुआत में ही हेयर फॉल के इलाज से आप गंजेपन की समस्या से बच सकती हैं। और सखियों, इसी के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियो, ध्यान का प्रचलन हजारों वर्षों से है। प्रारंभिक ध्यान का उद्देश्य जीवन की पवित्र और रहस्यमय शक्तियों की गहरी समझ विकसित करना था। आजकल ध्यान का उपयोग मुख्यतः विश्राम करने और तनाव कम करने के लिए किया जाता है। ध्यान मन और शरीर को जोड़ने वाली एक प्रकार की पूरक चिकित्सा है। ध्यान आपको गहरी शांति और मन को शांत करने में मदद करता है। ध्यान के दौरान आप एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इससे आपके मन में उमड़ रहे विचारों का प्रभाव कम हो जाता है, जो तनाव का कारण बन सकते हैं। यह प्रक्रिया शारीरिक और भावनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जा सकती है। सखियों, ध्यान हमें शांति, सुकून और संतुलन का अनुभव करा सकता है, जिससे हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को लाभ हो सकता है। हम ध्यान का उपयोग तनाव से राहत पाने और आराम करने के लिए भी कर सकते हैं।

आपको किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपको शांत करती हो। ध्यान आपको एकाग्र रहने और आंतरिक शांति बनाए रखने में भी बहुत ही मदद करता है। सखियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, पहले सुन लेते हैं यह गीत।

सखियो, हम चर्चा कर रहे हैं कि मेडिटेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सखियो, मेडिटेशन हमें तनाव पैदा करने वाली चीज़ों को देखने का एक नया तरीका प्रदान करता है। यह हमें एक अधिक आत्म जागरूक बनाता है। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाओं को कम करता है। सखियो, मेडिटेशन हमें अधिक रचनात्मक बनने में मदद करता है और हमें अधिक धैर्यवान बनने में भी मदद करता है। और ध्यान हमें बेहतर नींद दिलाने में भी मदद करती है। सखियों, ध्यान के विभिन्न रूपों में होने वाली सामान्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे शरीर केंद्रित ध्यान, चिंतन भाव केंद्रित ध्यान, मंत्र ध्यान, गति के साथ ध्यान, ध्यान साधना, दृश्य आधारित ध्यान। सखियों, ज़रूरत है तो हमें दिन भर के बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालने की। और ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी जगह शांत, सुकून देने वाली और आरामदायक होनी चाहिए। और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद लीजिए एक और प्यारे से गीत का।

सके सोयाबीन दलहन की फसल है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। सके सोयाबीन मानव रक्त कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में सहायक होती है। यह फाइबर का उत्कृष्ट स्रोत है, जिससे यह आसानी से पच जाता है। इसमें आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखने में

सहायक होते हैं। ये हमारे शरीर को कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन और सेलेनियम सहित सभी आवश्यक तत्व और खनिज प्रदान करता है। सोया आइसोफ्लेविन से भरपूर होता है, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर, हृदय रोग और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को भी कम करने में सहायक होता है। तो बहनों, आइए जानते हैं इससे बनने वाले व्यंजनों के बारे में। जैसे बहनों, सोया कबाब, इसमें सोयाबीन को 15 मिनट गर्म पानी में भिगो कर रखें। अब इसमें अदरक, लहसुन, धनिया, प्याज, सोयाबीन को मिक्सी में पीस लें। अब मिक्सचर को कॉर्नफ्लोर में मिलाकर मसालेदार गोल गोल कबाब बनाएं और सुनहरा होने तक तलें। इसी तरह बहनों, पत्ता गोभी के कप में थाई सोयाबीन, इसमें ताजी पत्ता गोभी के कपों में सोया, प्राच्य स्वाद और अंकुरित बीन्स की सुगंधित फिलिंग्स भरी होती हैं। ओट्स और सोयाबीन पैनकेक से तैयार ये पैनकेक सेहत से भरपूर दिन की शुरुआत के लिए बेहतर विकल्प हैं। सखियों, बातें तो और भी होंगी, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

सखियों, हम चर्चा कर रहे हैं सोयाबीन के व्यंजनों के बारे में। सखियों, सोया पोहा ये सोए के गुणों से भरपूर, स्वादिष्ट, हल्का और बनाने में आसान पोहा बनाने की एक बेहतरीन रेसिपी है। सोया स्टर फ्राई, इसमें सोया को हल्का फ्राई करके और वेजिटेबल्स के साथ सर्व किया जाता है। यह भी सेहतमंद नाश्ते का एक बेहतरीन विकल्प है। सोया पाउच, यह एक ऐसा स्नैक है जिसे आप खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। गेहूं के आटे और सूजी से बनी ये छोटी छोटी स्वादिष्ट थैलियाँ मसालेदार सोया मिश्रण से भरी हुई और हल्के से तली हुई बहुत ही शानदार लगती हैं। आप पुलाव में भी सोयाबीन चंक्स डाल सकती हैं और सोयाबीन चंक्स की मसालेदार सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसी तरह सोयाबीन कोफ्ता, सोया चाप की सब्जी, सोया मोमोज, सोयाबीन कोफ्ता भी आप आसानी से घर पर बना सकती हैं। और इसी के साथ आनंद लीजिए एक और गीत का।

0: समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
1: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
0: कोलकाता में INS Dunagiri, INS Sanshodhak और INS Agra को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
1: The Prime Minister also spoke about International Yog Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
1: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
1: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargila bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.
1: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है. दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है. मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया.
1: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage.

0: forces, blaming it as the treaty-breaking United States regime for renewed escalation. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
1: Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. On to sports now. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the U.S. Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final. In ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in the final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 international of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defence production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And an ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
3: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक

0: हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का

0: हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गाँव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है।

0: भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच

0: भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे T20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

लीजिए सुनिए वक्त की आवाज़ फिल्म का ये गीत, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की है। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत बप्पी लहरी का।

लीजिए सुनिए अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज को। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत नदीम शवन का।

आप सुन रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज को। फिल्म का नाम है लव 86। गीत के बोल SH बिहारी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को सुना। फिल्म का नाम था दूध का कर्ज। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत अनु मलिक का।

कुमार सानू और अलका याग्निक को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हकीकत। गीत के बोल गुलशन बावरा के थे और संगीत दिलीप सेन और समीर सेन का। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस का प्रसारण सुनेंगे।

आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3 बजे हैं। अब उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशियात का आगाज होता है।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक नशर होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा सुनिए। अब से कुछ ही देर में यानी 3:05 पर खबरें सुनिएगा। 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम पेश किया जाएगा।

3:30 पर इकबाल मजीद का तहरीर करदा ड्रामा एक वक्त की रोटी नशर किया जाएगा। शाम 4 बजे सुनिएगा कुछ मिले जुले फिल्मी नगमे और 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी।

सराहनीय थी उन प्रोग्राम्स की जानकारी जो आज आप उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस में समाप्त करेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 होने को हैं, अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुद्र से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वजीर आजम ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीज कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तई तशक्कुर का इजहार किया। भारत और सेशेल्स ने विक्टोरिया में वफूद की सतह की बातचीत के बाद सेहत, ज़रात, खजाने और खला समेत मुख्तलिफ शोबों में समझौतों पर दस्तखत किए हैं। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान की अफवाज ने एक दूसरे के खिलाफ फिर से हमले किए हैं। और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि भारत में ही बनाए गए C-295 तर्ज के हवाई जहाज की पहली परवाज मुकम्मल होने के साथ ही भारत ने जून के महीने में एविएशन के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वजीर अजम ने बताया कि इस तरह के 40 हवाई जहाज भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत ने इस माह मुल्क की सिक्योरिटी और खुद किफालत से वाबस्ता कामयाबी हासिल की है। वजीर आजम ने हाल ही में कोलकाता में बहरिया की एक तकरीब में शिरकत की थी, जिसमें INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS एग्रे को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। वजीर आजम ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि इन बहरी जहाजों के डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज अंदरून मुल्क तैयार की गई है। वजीर आजम ने कहा कि जून के महीने में ही दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भी मुल्क में ही तैयार किए गए तवील दूरी के ज़मीनी हमले से मुतालिक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। इसे DRDO की तजर्बागाहों और भारतीय सनत के साझेदारों ने मिलकर तैयार किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वजीर आजम ने योग के बैन अलावामी दिन का भी तस्करा किया, जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की कोशिशों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में मुनाकिदा

0: अल्फिकार ने कहा कि ईरान ने कुवैत और बहरीन में बुनियादी ढांचों को भी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अल्फिकार ने दावा किया कि ईरानी फोर्सेस ने कुवैत में अली अल सालिम हवाई ठिकाने और बहरीन में अमेरिका के पांचवें बेड़े से वाबस्ता सहूलतों समेत अमेरिका के 8 मकामात और मुतालिका बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं। आईसीसी खवातीन के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में आज भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क़यादत में भारतीय खवातीन की टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है। भारतीय टीम ने अपने 4 मैचों में से 3 में कामयाबी हासिल की है। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में डीआर कांगो ने पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। आज सुबह एटलांटा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप के एक मैच में डीआर कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। आज सुबह ग्रुप के एक और मैच में पुर्तगाल और कोलंबिया के दरमियान फ्लोरिडा के मियामी में स्टेडियम में खेला गया मैच ड्रॉ रहा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अंदरूने मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुद्र से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वजीर अजम ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, निज कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तय तशक्कुर का इजहार किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस। और लीजिए सामाइन, अब सुनिए प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम में आज आपके साथ हूं मैं नगमा आदावर से। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं केदारनाथ फिल्म की इस नगमे से। आवाजें हैं निकिता गांधी और अरिजीत सिंह की। नगमा निगार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और मौसीकार हैं अमित त्रिवेदी।

पैपॉन की आवाज में ये नगमा था फिल्म सुई धागा का। नगमे के बोल लिखे थे वरुण ग्रोवर ने और मौसीकी तरतीब दी थी अन्नू मलिक ने। और लीजिए अब सुनिए इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, श्रेया घोषाल की आवाज में लापता लेडीज फिल्म का नगमा। नगमा निगार हैं स्वानंद किरकिरे और मौसीकार राम संपत।

समय अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए अब सुनिए इकबाल मजीद का तहरीर करदा ड्रामा, एक वक्त की रोटी।

साहिबान, सुनाता हूँ आपको एक दास्तान कि पेशा मेरा दास्ताने सुनाना है। आंखों की देखी कहता नहीं, कानों की सुनी कहता हूं कि बरसा बरस पहले एक राजा का राज ऐसा भी था कि जहां की रियाया दिन रात पैसे के पीछे भागती थी, और पैसा अगर मिल भी जाता तो उसे कम समझकर और भी ज्यादा पाने के अच्छे और बुरे सारे जतन कर डालती। कहते हैं कि पैसे की हवस का यह हाल देखकर एक हवाओं की देवी जो अपनी हवा के एक झोंके से कौमों तक की किस्मत बदल देती थी, उस मुल्क के बाशिंदों के पास गई ताकि पैसे के पीछे भागने वाली उस खिलकत की परेशानियों को दूर कर सके। कहते हैं कि हवा की देवी की आमद पर उस मुल्क के लीडरों ने देवी की बड़ी आओ भगत की और उसके एजाज में एक शानदार जलसा भी किया गया। ऐ मेरे प्यारे सामईन, अपनी तसव्वुर की आंखें कुछ देर को बंद कीजिए और आइए मेरे साथ उस जलसे में चलिए जहां हवा की देवी का खैर मकदम किया जा रहा है।

0: इसलिए आप में से हर एक दिन रात पैसे के पीछे भागता है, उसे जैसे तैसे हासिल भी करता है, मगर वो पैसा उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? तो ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आपके मुल्क के बड़े दिमाग वालों से मेरी बातचीत हो चुकी है। मुझे बताया गया है कि अगर आप सब साहबान को रोजाना 2 लाख रुपए की आमदनी हो जाया करे तो आप लोगों की जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यहाँ जो बड़े मियाँ पास बैठे हैं, जरा आप बताइए, क्या आपको 2 लाख रुपए रोज की आमदनी मंजूर है?
1: जी क्या कहा, 2 लाख रुपए रोज?
0: जी हाँ, हर सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपके तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए निकला करेंगे।
1: 2 लाख? देवी जी, व्हाट आर यू सेइंग? डू यू नो?
0: आई मीन व्हाट आई से।
1: 2 लाख रुपए रोज?
2: अरे बड़े मियाँ, अरे ये तो बेहोश हो गए।
3: अरे इस मजमे में कोई डॉक्टर है क्या? है
4: डॉक्टर? मैं आ रहा हूँ।
2: आइए डॉक्टर साहब,
4: आप लोग पीछे हटिए, हवा आने दीजिए जरा।
2: अरे अरे इन बड़े मियाँ की तो आंखें ही पलट गई। डॉक्टर साहब जरा देखिए तो।
4: देखता हूँ, आप पीछे हटे। सॉरी, इनका तो हार्ट फेल हो गया, शायद इतनी बड़ी खुशी का शौक सह नहीं सके। देवी जी, ये बड़े मियाँ तो गए ऊपर।
0: मुझे दुख है कि इस मौत का कारण मैं बनी। ठीक है, तो मैं 2 लाख की रकम कम करके अब 2,000 किए दे रही हूँ। शायद 2 लाख रोज आपके लिए बहुत ज्यादा है।
5: अरे 2 लाख से 2,000? इतना घाटा? अरे अरे मेरा दिल।
6: देवी जी ये लीजिए, ये सेठ जी इतने बड़े घाटे के ख्याल से ही चल बसे।
7: नहीं, कम मत कीजिए।
8: अरे अरे आप तो ये बताइए कि क्या 3 लाख रुपए रोज नहीं मिल सकते?
0: बिल्कुल मिल सकते हैं। आपके ये लीडर साहब मेरे पास बैठे हैं, ये कहें तो मैं 3 लाख रोज कर दूंगा।
9: देवी जी, दोस्तों देखिए, पैसे और दौलत की यूं तो कोई हद नहीं है, पर हमने तय किया है कि 2 लाख रुपए रोज सबको मिला करे। और साथियों, इसमें बच्चा, जवान, औरत, मर्द सब शामिल हैं। हर एक को उसके तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए रोज मिलेंगे, ये वादा देवी जी ने हमसे कर लिया है।
0: दोस्तों, मुझे दुख है कि अभी अभी इस जलसे में 2 आदमी अल्लाह को प्यारे हो गए, एक इस खुशी में कि उसे अब 2 लाख रोज मिलेंगे, और दूसरे इस सदमे में कि 2 लाख रोज की आमदनी 2,000 में बदल गई। इसलिए मुझे डर है कि जिस दिन वाकई 2 लाख रोज आपके तकिए से निकलना शुरू हो जाएंगे, उस दिन बहुत से लोग हाइपरटेंशन का शिकार होकर पटापट मरेंगे। उसके लिए मुझे दोष मत दीजिएगा।
9: अरे देवी जी, जिसकी आ जाएगी उसे कौन रोक सकेगा है? और मौत के लिए तो कोई ना कोई बहाना होता ही है।
0: ठीक है, तो कल से आप सबके तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए रोज निकलना शुरू हो जाएंगे। मगर एक शर्त के साथ।
10: शर्त? क्या शर्त? कैसी शर्त?
0: वो शर्त मैंने आपके लीडर यानी नेता साहब को बता दी है, वही आपको बताएंगे।
9: साथियों, हवा की देवी जी ने जो शर्त बताई है उस पर सरकार ने गौर करने के लिए काबीना की एक जैली कमेटी बनाई थी। हमें खुशी है कि कमेटी ने उस शर्त को मान लेने की सिफारिश की है।
10: मगर वो शर्त क्या है?
9: बताता हूँ वो शर्त।
10: ठहरिए,
9: सुनिए भाई, वो शर्त ये है कि
10: ठहरिए, ये शर्त कुछ ऐसी वैसी तो नहीं है, क्योंकि मैं भी दिल का कमजोर हूँ।
9: जी नहीं, उस शर्त के तमाम पहलुओं पर मुल्क के आला दिमागों ने पहले ही गौर कर लिया है।
10: अच्छा, तो बताइए जरा वो शर्त।
9: वो शर्त ये है कि
8: देखिए, अगर सरकार उस पर कोई लंबा चौड़ा वेल्थ टैक्स लगा रही हो तो उसे हम

ऐ मेरे प्यारे जमीन के बाशिंदों, मैं आपके मुल्क में पहली बार आई हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि आप लोगों की जिंदगी में पैसे की बड़ी अहमियत है।

0: देखिए देखिए, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब खामोश रहे। ये आपने कैसे समझ लिया कि सरकार उस पर टैक्स लगा रही है?
1: अजीब, वो टैक्स लगाने के अलावा अब तक करती ही क्या रही है?
0: आपने शर्त सुनी नहीं और नारेबाजी करने लगे। अरे भाई, आपको 2 लाख रुपए रोज मिलने जा रहे हैं, बच्चा बच्चा करोड़पति होने जा रहा है। अब तो आप लोग नारेबाजी जैसी छिछोरी हरकतें छोड़ दीजिए।
1: शर्त बताइए, शर्त तो बताइए।
2: मैं दोहराए देती हूँ वो शर्त।
1: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
2: जो कोई भी अगर एक बार भी भूले से भी हंसना तो दूर रहा, बस मुस्कुरा भर दिया, तो उसके तकिए के नीचे से नोट निकलना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये है वो शर्त।
3: मतलब हंसना मुस्कुराना बंद?
2: नहीं नहीं नहीं, बंद तो नहीं है। आप चाहें तो मुस्कुराएं, हंसें, 2 लाख मिलना बंद हो जाएंगे।
4: ऐसी बुरी तो नहीं है।
5: मेरे ख्याल में भी शर्त काफी माकूल है।
0: देखिए देखिए साहिबान, सरकार ने इस मामले पर पहले ही सोच विचार कर लिया है। ये देखा गया है कि हम अपने कीमती कौमी वक्त के एक बड़े हिस्से को फालतू ही बेकार के हंसी मजाक में गुजार दिया करते हैं। इस शर्त के लग जाने से आमदनी के साथ साथ हमारे अंदर संजीदगी और बुर्दबारी भी पैदा होगी।
6: शर्त अच्छी है, हम लड़कियों को सड़क पर खड़े उबाश लड़कों के गंदे तहतहों से भी छुट्टी मिल जाएगी।
5: अजी, दफ्तरों में क्या कम ढोल धप्पा होता है। अच्छी शर्त है, हमें मंजूर है भाई।
7: देखिए, आप लोग जल्दबाजी से काम नहीं लें, जरा और सोच लें। अरे भाई, डॉक्टरों का कहना है कि हंसी और कहकहा इंसान के लिए टॉनिक की तरह काम करता है, और सेहतमंद रहने के लिए इस टॉनिक की बहुत सख्त जरूरत होती है।
0: मोहतरमा, परेशान ना हो, सरकार पहले ही नेशनल काउंसिल ऑफ हेल्थ से इस मामले में मशवरा कर चुकी है।
7: उसका क्या कहना है?
0: उसने कहा है कि वो हंसी का मुतबादिल टॉनिक तैयार कर लेगी। अच्छा। जिसका इस्तेमाल उन कमियों को पूरा कर देगा।
1: अरे साहब, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? शर्त मंजूर है हमें।
2: ठीक है, तो शर्त याद रखिएगा, जो भी मुस्कुराया वो गया। अच्छा, तो अब मैं आपके मुल्क से जा रही हूँ, बहुत खास जरूरत पर ही मुझे आपकी सरकार बुला सकेगी, वरना नहीं।

0: इस तरह ए मेरे प्यारे सामईन, हवा की वो देवी कभी ना मुस्कुराने की शर्त लगाकर चली गई। उसके जाने के बाद रात गुजरी, सवेरा हुआ तो खुदा का करना क्या होता है कि जो भी सोकर उठता है अपने तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए पाता है। लोग देवी को दुआ देते थे और अपनी तिजोरियां भरते थे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुल्क का हर शहरी करोड़पति हो गया। मगर कहते हैं कि एक तरफ दौलत की रेल बेल थी तो दूसरी तरफ उसी मुल्क में कुछ और ही हाल था। चलिए जरा देर को उस मुल्क के एक पुलिस स्टेशन पर लिए चलता हूं।
1: क्या बात है भाई, क्यों चीख रही है?
2: अरे थानेदार साहब, मेरी सास ने मुझे कंगाल कर दिया।
1: क्या किया तेरी सास ने?
2: मुझे दिवालिया कर दिया हुजूर।
1: दिवालिया? वो कैसे?
2: हुजूर, वो मुझसे रोज लड़ा करती थी, मैंने भी एक दिन उसे गालियां दे दी।
1: अच्छा तो
2: कल रात को उसने मुझे बड़े प्यार से अपने पास लिटा लिया।
1: किसने? सास ने?
2: हाँ थानेदार साहब, अपने पास लिटा कर फुसलाने वाले बातें करती रही, फिर मुझे पकड़ कर मेरे पेट में खूब गुदगुदी की, खूब गुदगुदी की।
1: तो तुमको हंसी आ गई होगी?
2: हुजूर, मैं किलकिला कर रोने पड़ी।
1: और आज सवेरे तुम्हारे तकिए के नीचे से पैसे नहीं निकले होंगे।

0: भाई रोजाना सैकड़ों केस हो रहे हैं ऐसे, जिससे दुश्मनी हो जाती है उसे पकड़ते हैं और गुदगुदाकर छोड़ देते हैं, या बातों बातों में कोई ऐसा चुटकुला सुना देते हैं कि आदमी को हंसी आ जाए।
1: पर सरकार ने कानून जो बनाया है कि अगर कोई किसी को जबरदस्ती हंसाएगा तो उसको भी हंसा कर सजा दी जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी सास को भी हंसा हो।
0: अरे ये काम मेरा नहीं है, अदालत का है।
1: तो अदालत से कौन आ मेरी सास को हंसाए?
0: अरे अदालतें खुद परेशान है। जब मुल्ज़िम ये देखता है कि जज उसको सजा देने वाला है तो कोई ऐसी हरकत कर देता है कि जज को हंसी आ जाए। तीन चार जज हंस चुके हैं अब तक, कंगाल हो गए बेचारे, इसलिए मारे सदमे के छुट्टी लिए पड़े हैं और मुकदमे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं।
1: बर्बाद हो गए।
0: अच्छा ठीक है, तुम भी रिपोर्ट लिखा दो और जाओ।

0: जी, मैं आपको लिए चलता हूँ एक आलीशान होटल के काउंटर पर, जहाँ हसीनों जमील महारूह अदा के साथ बैठी रिसेप्शनिस्ट के फराइज अंजाम दे रही है। शायद कोई परदेसी उसको मुखातिब कर रहा है।
1: हाय।
2: हाय। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
1: आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं।
2: स्मार्ट नहीं लगती तो ये साले नौकरी देते मुझे?
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी है।
2: तारीफ का शुक्रिया।
1: आपके होटल में मुझे बहुत आराम मिला।
2: हमें फिर खिदमत का मौका दीजिएगा।
1: मैडम, कैसे बोल रही हैं आप? यही बात जरा नरमी से नहीं कह सकती?
2: नरमी से बोलने में मुस्कुराने का डर रहता है, इसलिए अपना रास्ता नापो।
0: देखा आपने, अब जरा होटल के रेस्टोरेंट में आइए। वो देखिए, एक कोने की मेज पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। ये प्यार करते हैं एक दूसरे से।
3: सुनो डियर।
4: हाँ डियर।
3: क्या तुम उससे बहुत प्यार करते हो? तुम मेरी खातिर कुछ भी कर सकते हो?
4: हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
3: मैं नहीं जानती मुस्कुराहट कैसी होती है। क्या तुम मुझे मुस्कुराहट दिखा सकते हो? एक बार, बस एक बार मेरे लिए मुस्कुरा सकते हो?
4: ये तुम क्या कह रही हो? मुस्कुराने का अंजाम तो तुम जानती ही हो।
3: जा, मैं तुमसे नहीं बोलती। देख लिया तुम्हारा प्यार।
4: अरे भाड़ में गया प्यार। एक बार मुस्कुराऊं और जिंदगी भर डंडे बजाऊं?
3: क्या तुम्हें मुझे मुस्कुराते हुए देखने का कभी जी नहीं चाहता?
4: चुप रहो, फालतू बातें मत करो।
3: नहीं चुप रहूंगी मैं, मुस्कुराऊंगी मैं, हंसूंगी, कहकहे लगाऊंगी।
4: पागल हो गई हो क्या?
3: मैं बिल्कुल होश में हूँ। नहीं हंसूंगी तो पागल हो जाऊंगी। बहुत दम घुट रहा है मेरा। देखो मैं हंसती हूँ। तुम भी हंसो ना।
4: ओ गॉड, ओ गॉड। अच्छा हुआ तू शादी से पहले ही हंस ली, नहीं तो एक मुफलिस औरत मेरे पल्ले पड़ती।
0: और यह है सरकारी महकमे इत्तलात का सूबाई दफ्तर, जहां प्रेस के रिपोर्टर्स की भीड़ लगी है।
5: डायरेक्टर साहब, हमें बताइए कि हंसने और मुस्कुराने के बंद हो जाने से सरकार को कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं?
6: अच्छी एक परेशानी हो तो बताऊं।
5: जैसे?
6: अरे भाई, हमारी हवाई सर्विस गैर मुल्कियों में नापसंदीदा करार दे दी गई है।
5: क्यों साहब?
6: भाई इसलिए कि हमारी एयर होस्टेसेस टर्राकर बात करती हैं, ऐसा चेहरा बनाकर मुसाफिरों को नमस्ते करती हैं जैसे आखिरी सलाम कर रही हों।
5: अरे अच्छा, सुना है ऐसे लोगों की तादाद आए दिन बढ़ती जा रही है जो गलती से मुस्कुरा दिए और 2,00,000 रुपए रोज की आमदनी से महरूम हो गए।
6: जी हाँ, और अब उनकी जमात चाहती है कि और लोग भी उन्हीं की तरह हो जाएं।
7: ये आप किस बिना पर कह रहे हैं?
6: भाई वो लोग खुलेआम हास्य कवि सम्मेलन और मजाया मुशायरे कराते हैं।
5: अच्छा, तो ये मजाया शायरों को अपनी आमदनी खोने का डर नहीं लगता क्या? सुनाते सुनाते अगर खुद उन्हें कहीं हंसी आ गई तो?
6: अजी, मजाया शायर शायरी सुनाते वक्त खुद कहाँ हंसता है भला?
5: हाँ, ये तो
6: जितनी रोनी सूरत बनाकर कलाम पढ़ता है उतनी ही दूसरों को हंसी आती है।
5: तो ए, शायर चिल्लाएंगे नहीं अगर मुशायरे बंद कर दिए गए तो?
6: हाँ जी हाँ, वो कहते हैं कि हम

0: काम सुनाना बंद कर देते हैं तो पेट फूलता है और डकारें बहुत आती हैं।
1: सुना है ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट क्लास सबसे ज्यादा दहशतजदा है, हरदम मुस्कुराहट के खौफ से सहमा रहता है।
0: हाँ जी हाँ, ऐसा था पर अब वो बात नहीं है।
1: क्यों
0: भाई, अब तो बहुत से योगा सेंटर्स खुल गए हैं जहां जबड़ों की ऐसी एक्सरसाइज कराई जाती है कि आदमी कोशिश करने पर भी मुस्कुरा नहीं सकता।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सबसे ज्यादा नुकसान किस तबके को हो रहा है?
0: जानना चाहते हैं आप?
1: बिल्कुल।
0: तो लीजिए, ये एक माँ की कहानी का कैसेट है, इसे सुन लीजिए।
1: कैसेट माँ की कहानी का?
0: जी हाँ, माँ की कहानी का। ये कैसेट बाजार में नहीं मिलेगा, पाबंदी है इसके बजाने पर। सुनिए आप लोग।
1: सुनाइए सुनाइए।
2: डॉक्टर साहब, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया। छोटे छोटे तीन बच्चे थे मेरे। मुझे हरदम ये डर लगा रहता था कि वो कहीं भूले से हंस ना दें। उन्हें अलग अलग बक्सों में बंद करके रखती थी मैं। कभी प्यार से बात तक नहीं की उनसे। उनके बदन पर घाव लगाकर दिन में दो एक बार नमक छिड़क देती थी कि उसकी तकलीफ से वो तड़पते रहे और उन्हें हंसने का ख्याल भी ना आए। एक दिन मेरे दो बेटे मेरी आंख बचाकर पड़ोस के एक बच्चे के साथ खेलने लगे। एकाएक मेरे कानों में दोनों के हंसने की आवाज आई। मैं गिरती पड़ती उधर भागी। देखा तो दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। खुशी के मारे उनके चेहरे ऐसे चमक रहे थे जैसे मंदिरों के कलर। मुझे लगा कि मेरी 4 लाख रोज की आमदनी उन बच्चों की एक हंसी में हमेशा के लिए धुआं हो गई। मैं गुस्से से कांपने लगी। एक के सीने पर सवार हो गई और दूसरे का गला ऐसा दबाया कि वो सांस तक नहीं ले सका। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने दूसरे बच्चे के सीने पर से उतरी तो वो भी खत्म हो चुका था। डॉक्टर, अब मेरी ये एक ही औलाद बची है, इसका कोई ऐसा ऑपरेशन कर दीजिए कि इसे जिंदगी भर हंसी ना आए।
3: ऐसा क्यों चाहती हैं आप?
2: ये भी हंस दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी डॉक्टर।
3: क्यों,
2: कैसी बात करते हैं आप? फिर इसको 2 लाख मिलना बंद नहीं हो जाएंगे?
3: मुझे अफसोस है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
2: मैं बड़ी उम्मीदों से आई हूँ आपके पास डॉक्टर।
3: उम्मीद?
4: पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब हमसे मुस्कुराहटों का खजाना छीन लिया गया। मेरा 6 महीने का बच्चा, बच्चा जब बिस्तर पर से उछलकर मां को देखकर ठुमकता था और उसकी मासूम चहचहाटों को देखकर उसकी मां हंस हंस कर आवाजें निकालने और उससे खेलने के बजाय अपने मुंह में दुपट्टा ठूस कर सिसकती हुई उसके पास से भाग जाया करती थी तो मेरा जी चाहता था कि मैं खुदकुशी कर लूं। सारी रात तड़प तड़प कर गुजारता था मैं। मेरी बीवी बच्चे से भागने लगी, दूध पिलाती तो मुंह फेर कर। लगातार एक खौफ में, एक जानलेवा घुटन में जी रहे थे हम। एक दिन मेरे बच्चे ने मुझे देखकर किलकारी मारी। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे बिस्तर पर से उठाकर सीधे से लगा लिया मैंने और खूब तालियां बजाई, हंस हंसकर खूब दुलार किया बच्चे से। मुझे लगा कि मैं इतना हल्का हो गया हूं कि हवा में उड़ रहा हूं। पर मेरी बीवी आज भी बस एक तरफ पटी पटी आंखों से देखती रहती है। पुकारो तो बोलती नहीं, छुओ तो एक ठंडी लाश लगती है वो। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, कैसे मदद करूं मैं तुम्हारी?
5: तो ऐ मेरे अजीजों, ये दास्तान यूं आगे बढ़ती है कि कुछ ही अरसे में उस मुल्क पर ऐसी बदकिस्मती छाई कि खुदा की पनाह, लोग दीवाने हो गए। सरकार का इंतजाम दरहम बरहम होने लगा। तभी मुल्क के जहां दीदा खुशबू

सामाईन अभी आप सुन रहे थे इकबाल मजीद का तहरीर करदा ड्रामा एक वक्त की रोटी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए अब सुनिए कुछ मिले जुले फिल्मी नगमे।

फिल्म कुर्बानी का नगमा भी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। नगमा निगार थे इंदीवर और मौसीकार थे कल्याण जी आनंद जी। और लीजिए अब सुनिए अगला नगमा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमे की बोल लिखी है निदा फाजली ने और मौसीकी तरतीब दी है उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये नगमा था, फिल्म जहरीला इंसान का। मौसिकार थे आर.डी. बर्मन। अगला नगमा आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं जावेद अख्तर और मौसिकार हैं जतिन ललित। फिल्म का नाम है यस बॉस।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये नगमा भी आपने सुना। फिल्म का नाम था याराना। मौसिकार थे राजेश रोशन। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुछ मिले जुले फिल्मी नगमे। अगला नगमा आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमे के बोल लिखे हैं कैफी आज़मी ने, मौसिकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है हीर राँझा।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज को भी आपने सुना होगा। फिल्म का नाम था बुद्धत। नगमा निगार थे इंदीवर और मौसीकार थे बप्पी लहरी। और लीजिए अब सुनिए इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, परवीन सुल्ताना की आवाज़ में कुदरत फिल्म का नगमा। नगमा निगार हैं मजरू सुल्तानपुरी और मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

0: सामिन अभी आप सुन रहे थे कुछ मिली जुली फिल्मी नगमे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुंदर से लेकर आसमान तक तेज़ी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज़ C-295 की पहली परवाज़ मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीज कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तई तशक्कुर का इजहार किया। भारत और सेशेल्स ने विक्टोरिया में वफूद की सतह की बातचीत के बाद सेहत, ज़रात, खजाने और खला समेत मुख्तलिफ शोबों में समझौतों पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो सफ़र से मुतालिक ज़रूरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ना जाएं। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान की अफवाज ने एक दूसरे के खिलाफ फिर से हमले किए हैं। और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि भारत में बनाए गए C-295 तर्ज के हवाई जहाज़ की पहली परवाज मुकम्मल होने के साथ ही भारत ने जून के महीने में एविएशन के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने बताया कि इस तरह के 40 हवाई जहाज भारत में तैयार किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत ने इस महीने मुल्क की सिक्योरिटी और खुद कफालत से वाबस्ता कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म ने हाल ही में कोलकाता में बहरिया की एक तकरीब में शिरकत की थी, जिसमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि इन बहरी जहाज़ों के डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज़ अंदरून मुल्क तैयार की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जून के महीने में ही दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भी मुल्क में ही तैयार किए गए तवील दूरी के ज़मीनी हमले से मुतालिक क्रूज मिज़ाइल की कामयाब आजमाइश की। इसे DRDO की तजर्बा गाहों और भारतीय सनत के साझेदार इदारों ने मिलकर तैयार किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत समुंदर से लेकर आसमान तक तेज़ी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने योग के बैन अल-अक़वामी दिन का भी तज़किरा किया, जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की कोशिशों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में मुनक़िदा आलमी योगासन चैंपियनशिप का भी जिक्र किया, जहां भारत ने सोने के 102 तमगों समेत मजमूई तौर पर 114 तमगे जीते। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तामीर में आवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा असासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ निकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये आवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफ़र पर न जाएँ और कार पूल का इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म ने किसानों से भी ये दरख्वास्त की थी कि वो बग़ैर केमिकल वाली खेती अख्तियार करें, अपने खेतों का तहफ़्फ़ुज़ करें और कुदरती खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ ताउन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार मुल्क भर के करोड़ों कुंभों को तहफ़ुज़ाती ढाल फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुतल्लिका शख्स को हादसा होने की सूरत में 2 लाख रुपए तक के बीमे की सहूलत मिली।

सकती है, जबकि इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 रुपये है। मन की बात के इस नशरिए में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तवहुम परस्ती या अंधविश्वास के मौजू पर भी बात की। जनाब मोदी ने बताया कि आसाम में पाए जाने वाले नायाब परिंदे हरगिला को रियासत के बाज़ हिस्सों में किस तरह अशुभ माना जाता था। उन्होंने कहा कि ये हरगिला परिंदा फितरत को साफ रखने में अहम रोल अदा करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हयातियाती उलूम की माहिर पूर्णिमा देवी बर्मन ने आवाम के जहन में पैवस्ती से गलत तासुर को बदलने का अहद किया और ख्वातीन को साइंस पर मबनी हकाइक से वाकिफ कराया। अपने खिताब के आखिर में वज़ीर आज़म ने पानी की बचत पर जोर देते हुए कहा कि बारिश के पानी के हर कतरे को बचा कर रखना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि कैच द रेन मुहिम की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। विक्टोरिया में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिने के साथ दो तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायज़ा लिया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने इलाकाई और बाहमी मफाद के बैन अलाक्वामी उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर सदर हर्मिने भी मौजूद थे। ज़राअत, खजाने, खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में कई समझौतों का तबादला किया गया। सेशल्स ने पायदार तरक्की और माहौलियात के लिए साजगार तरक्की के तय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अहद को तस्लीम करते हुए वज़ीर आज़म को माहौलियाती क़ियादत के अपने आला तरीन एजाज़ गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइज़न से सरफराज किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये उनके और भारत के शहरियों के लिए एक बड़ा एजाज़ है। जनाब मोदी ने कहा कि बहर हिंद एक मुश्तरका घर है और उसकी सिक्योरिटी, पायदार निज़ाम और खुशहाली मुश्तरका जिम्मेदारी है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने इक्तसादी इश्तराक को और ज़्यादा मजबूत और मुस्तकबिल के लिए साजगार बनाने के मामले पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्क अपनी अपनी सनतों के लिए नए मौके तलाश करने का सिलसिला जारी रखेंगे। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत और सेशेल्स के दरमियान कनेक्टिविटी को वसअत देने के लिए इकदाम किए जाएंगे। मुश्तरका प्रेस बयान में सेशेल्स के सदर ने कहा कि बातचीत जामे और दूरंदेशी पर मबनी रही, जिससे भारत और सेशेल्स के दरमियान दोस्ती और बाहमी एतमाद के मजबूत रिश्तों की अक्कासी होती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक कि उन्हें पूरे सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। ऑपरेशन एमिस्ताद के तहत भेजी गई भारतीय इमदाद वेनेजुएला पहुंच गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया है कि फील्ड अस्पताल यूनिट इमदादी रसद, दवाओं और तिब्बी साजो सामान से वहां जलजले से मुतासर इलाकों में इमदादी कोशिशों को तकवीत मिलेगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि आइंदा 3 से 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के शुमाली बहरे अरब के मजीद इलाकों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड के बाज़ इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। उधर महकमे मौसमियात ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद गर्मी जारी रहने की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पहले से ही कमज़ोर जंगबंदी टूट गई है। ICC ख्वातीन के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में आज भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेज़बान आयरलैंड के दरमियान 2 मैचों की सीरीज़ का दूसरा और आखिरी T20 मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरूनी मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए समुंदर से लेकर आसमान तक तेज़ी के साथ महफूज और ख़ुद कफील बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज़ C-295 की पहली परवाज़ मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफ़र करने से गुरेज करने, नीज कार पूलिंग को फ़रोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तय तशक्कुर का इजहार किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में वफूद की सतह की बातचीत के बाद सेहत, ज़राअत, खजाने

0: और खला समेत मुख्तलिफ शोबों में समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस। शाम के 5 बजने को हैं, अब उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्ताम पजीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, युवा साथी सुने कार्यक्रम युवा वाणी।

युवाणी में आज नमस्कार अक्षत चावला का। साथियों, आज रविवार का दिन है, जून का महीना है और राजस्थान के इस इलाके में जब उमस बहुत होती है और गर्मी से इंसान परेशान होता है तो फिर कई बार लोग गीत गाए जाते हैं। पंजाब के इलाके में लोकगीत है कि बारिश के लिए जो बना है, रब्बा रब्बा मी पा साडी कोठी दाणे पा कखड़ियाँ खरबूजे पा। तो इस तरह के लोकगीत बहुत बने हैं हमारे इस देश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकगीत हैं अलग अलग भाषाओं में। और बोलियाँ बदल जाने पर भी, जिसे अंग्रेज़ी में डायलेक्ट कहते हैं, वो बदलने पर भी गीत बदल जाते हैं। गीत, लोकगीत अलग अलग धुनों में भी गाए जाते थे अलग अलग इलाकों में। संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम भारतीयों से अच्छा कौन समझ सकता है। हर अवसर के लिए हमारे यहाँ लोकगीत बने, शादी ब्याह का अवसर हो या फिर बच्चे के पैदा होने का अवसर, या फिर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, शुभ वक्त हो, यहाँ तक कि लोग अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं उस वक्त भी कुछ पारंपरिक गीत थे। और इस तरह से गीतों का जो महत्व है भारत में, वो शायद ही कहीं और दुनिया में देखने को मिले, क्योंकि इंसान जो है वो जब से पैदा होता है तब से प्रकृति से जुड़ा होता है और मरते दम तक प्रकृति से दूर तो रह नहीं सकता। इसीलिए कई लोगों ने कहा कि प्रकृति के कल कल में है संगीत, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके रोने में है संगीत, नदियों बहती नदियों के कलकल में है संगीत, पवन बहती हुई है उसमें भी है जो संगीत, जिसे शोर शब्द कहते हैं। तो ये जो संगीत है इससे इंसान का रिश्ता बड़ा गहरा है। यही वजह है कि रेडियो जब आया भारत में 90 साल पहले तो लगातार लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक रेडियो उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बना जिसने न सिर्फ मनोरंजन दिया बल्कि जानकारियाँ भी दी और उसे देश दुनिया से जोड़ा। यही वजह है कि आज भी हम सुनते हैं कि किस तरह से लोग रेडियो के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं और रेडियो से आगे भी जुड़ा रहने की कामना करते हैं। रेडियो स्टेशन में आते हैं, देखते हैं कि किस तरह से प्रसारण होता है, किस तरह से बोला जाता है। ये सब इसलिए है क्योंकि संगीत जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यही वजह है कि जो पारंपरिक गीत थे उनके अलावा फिल्मी संगीत भी हमारे देश में बहुत फेमस हुए। विदेशी संगीत कुछ तबकों के लिए बने होंगे मगर शास्त्रीय संगीत तो सदियों से भारत में है और इसी ने दुनिया को संगीत की सीख भी दी। साथ ही साथ फिल्मी संगीत एक पैदल चलता व्यक्ति, काम करता मजदूर और साथ ही साइकिल पर, गाड़ी पर, दुपहिए वाहन पर कोई भी हो, गीत या तो सुन रहा होता या गुनगुना रहा होता है। यही वजह है कि संगीत का जो रिश्ता है वो बड़ा ही खास है, क्योंकि सुकून जो देता है, ज़िंदगी के हर पहलू पर जो संगीत बने हैं

खुशी में, गम में, हास्य संबंधी गीत भी हैं बहुत सारे जो हमें हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, कुछ गीत हमें रुलाते हैं। तो गीतों का ये जो रिश्ता है ये इंसान के साथ जन्म से ही है और अंत तक बना रहता है। यही वजह है कि अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक बेहतरीन गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

साथियों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम बना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और संगीत को जन जन के दिलों तक पहुंचाया, साथ ही देश दुनिया की जानकारी दी। आखिर ऐसा आज तक बरकरार क्यों है? क्योंकि रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने। ये वो विधा है, ये वो जरिया है जहां से संगीत ही नहीं, लोगों की भावनाएं भी सरहदों के पार तक गई, लोग आपस में जुड़े। आज भी कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो प्रसारित होते हैं कुछ वर्ग विशेष भाषाओं को बचाने के लिए, उनके कला संस्कृति को बचाने के लिए, जैसे कि युवाणी कार्यक्रम के बाद प्रसारित होता है सराय की प्रोग्राम, जिसमें सराय की भाषा में कार्यक्रम पेश होता है तो सराय की बोलने वाले लोगों को भी खुशी महसूस होती है। इसी तरह महिलाओं के लिए अलग से कार्यक्रम, देश दुनिया में कुछ बड़े खेल हों तो भी उनका प्रसारण। इस तरह से रेडियो ने हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की। यही वजह है कि आज भी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि वो जानकारी जो सचमुच सटीक हो, विश्वसनीय हो, उसे रेडियो की ही जानकारी को माना जाता है। रेडियो ने दुनिया को आपस में जोड़ा और यही वजह है कि आज भी पुराने लोग तो जुड़े हुए हैं, नई पीढ़ी वो भी जुड़ रही है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ जो जानकारी मिलेगी वो ऑथेंटिक होगी, साथ ही जो गीत संगीत यहाँ सुनने को मिलता है वो कहीं और नहीं सुनने को मिलता। रेडियो के कार्यक्रमों में शालीनता के साथ साथ सभ्यता साफ झलकती है और ये जो सभ्यता को बचाने का बीड़ा है रेडियो के पास, ऐसी कम ही संस्थाएं होती हैं दुनिया में जो निष्पक्ष और निश्चल भावना से अपना काम करती जाती है, लोगों के दिलों में जगह बनाती जाती है और लोग भी खूब प्यार देते हैं। कितने ईमेल, कितने पत्र आते हैं, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग आकाशवाणी परिवार के कई केंद्रों से जुड़े हुए हैं। कई लोग जो 90-100 साल की उम्र के हो गए हैं आज भी रेडियो सुन रहे हैं और अपनी घर की नई पीढ़ी को रेडियो सुना रहे हैं और साथ ही साथ कला संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। जब कोई और दौर नहीं था मनोरंजन का, कोई और तरीका नहीं था, तब रेडियो ने लोक संगीत के कार्यक्रमों को पेश किया, उसे आगे बढ़ाया, नृत्य के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जिसमें लोगों ने लाइव बड़े बड़े नृत्य करने वाले दिग्गज महारथियों को देखा और आज भी ऐसा निरंतर जारी है और ये सफ़र हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये सफ़र है प्यार का, मोहब्बत बांटने का, जो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। बातें इसी तरह से हम करते रहेंगे। एक गीत सुनते हैं

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: साथियों, युवाणी वो कार्यक्रम है जहाँ सिर्फ मनोरंजन और जानकारियाँ नहीं होती, बल्कि उन मुद्दों पे भी बात होती है जो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि स्मार्टफोन का ये युग है और इसमें हमारा ज़्यादातर समय स्मार्टफोन और कंप्यूटर लैपटॉप पर इसलिए बीतता है क्योंकि अब बहुत से काम घर बैठे भी हो जाते हैं, बाहर जाने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हम जानते हैं कि शॉपिंग भी आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर यानी कि ऑनलाइन ही हो जाती है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐप हैं, हम वहाँ पर जाते हैं और जो हमें पसंद आता है वो चीज़ें हम खरीद लेते हैं बड़ी आसानी से। और कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में या फिर अधूरी जानकारी के चक्कर में या पूरी रिसर्च ना करने के कारण फंस जाते हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है, कई परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है। जैसे कि कई बार रिटर्न को लेकर समस्या आती है, कई बार रिफ़ंड नहीं होता है, एक्सचेंज नहीं हो पाती है चीज़ें। जो चीज़ हमने ख़रीदी उसका, मान लीजिए कोई कपड़ा ख़रीदा है उसका साइज़ जो है वो हमें फ़िट नहीं आ रहा है तो हम उसे एक्सचेंज करवा पाएँ, ये हमें वहाँ पर चेक कर लेना चाहिए और नहीं कर पा रहे। प्रोडक्ट पे लिखा है कि एक्सचेंज हो सकता है मगर एक्सचेंज नहीं करके दिया जा रहा, या फिर वारंटी और गारंटी से रिलेटेड कोई समस्या है, यहाँ तक कि डिलीवरी या और शिपमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो भी हम अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हमें मदद करता है सरकार का उपभोक्ता संरक्षण कानून। पहले 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू था, मगर अब ये 2020 का जो नियम आया है इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं और ऑनलाइन जो ख़रीदारी है उससे जुड़े मामलों में भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि भुगतान के तरीकों में बदलाव आया है। अगर भुगतान करते हुए कोई गलती हो गई है या रिफ़ंड नहीं मिल रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। शिकायत का जो निवारण तंत्र है उसे बड़ा आसान बना दिया गया 2020 के इस अधिनियम के तहत, और

भुगतान के जो तरीके हैं उनको सुरक्षित बना दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म टैक्स लगता है, उस पर भी हम शिकायत कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जिनको लेकर के आम नागरिक उपभोक्ता परेशान हो रहा था, उसको सहूलियत मिली है, आसानी मिली है इस अधिनियम के आने के बाद। और अब हम ये जानें कि अगर कोई निर्माता गलती करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, और जो खरीदारी करने वाला इंसान है जिसे हम उपभोक्ता कहते हैं, उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि सोच समझकर चीज़ खरीदनी चाहिए और पूरी जानकारी लेनी चाहिए। बाज़ार के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो जो बेचने वाला है वो कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती कोई चीज़ खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकता, और बहुत सी जो ऑप्शंस उसे अपने पास रखने चाहिए। जैसे कि कोई प्रेशर कुकर खरीदने जाता है तो बहुत से कंपनियां इसे बनाती हैं, लेकिन सेफ्टी के जो मानक हैं वो उपभोक्ता को भी चेक करने चाहिए और बेचने वाले को भी बताना चाहिए कि इस पर ISI मार्क है, इस पर नहीं है, इसकी ये विशेषता है। तो ये जो अधिनियम है ये बाध्य करता है बेचने वाले को कि वो पूरी जानकारी दे। इस अधिनियम के तहत मिलावटी और नकली सामान की बिक्री के जो नियम हैं वो भी कड़े कर दिए गए हैं। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में अदालत से 2 साल तक की अवधि के लिए व्यक्ति को जो लाइसेंस जारी किया गया था उसे निलंबित किया जा सकता है, और दूसरी बार अगर दोषी पाया जाता है तो लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। इस तरह से अलग अलग लेवल की अदालतें बनाई गई हैं, और इस अधिनियम को जो 2020 से लागू किया गया है, एक्ट 2019, इसमें बदलाव ये आ गया कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है जो इसे रेगुलेट करती है। साथ ही पहले ये होता था कि हमने जिस कंपनी का सामान खरीदा अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत करनी है तो जहाँ पर उसका ऑफिस है उसी जगह पे शिकायत करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई सूरतगढ़ में खरीदता है तो उसे शिकायत करनी पड़ेगी दिल्ली जा कर के, क्योंकि कंपनी का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बदलाव ये है कि व्यक्ति सूरतगढ़ में रहकर ही दिल्ली की किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकता है और कंपनसेशन मांग सकता है। जो भी नुकसान हुआ है, अगर जानमान की हानि हुई है तो उसके लिए हर्जाना भुगतना पड़ेगा कंपनी को, और जो उपभोक्ता है उसे इसका मुआवजा मिलेगा। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई शिकायत का निपटारण किया जाएगा तो 1 करोड़ तक के मामले होंगे। 1 से 10 करोड़ तक के मामलों को स्टेट लेवल पर निपटारा किया जा सकता है, और राष्ट्रीय लेवल पर यानी नेशनल लेवल पर 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर मामला है उसका निपटारण होता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हैं वहाँ पर बहुत से रूल बनाए गए और डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रावधान है उसे एक्सटेंड कर दिया गया। साथ ही ये भी किया गया है कि कोर्ट जो है वो मध्यंतर यानी कि मीडिएशन जिसे कहते हैं कि आपसी मध्यस्थता करवा सकता है। कोर्ट में मामला जाता है तो बार बार तकलीफ़ें होती हैं, हियरिंग्स होती हैं, इसलिए कोर्ट का भी समय ज़ाया ना हो तो आमने सामने बैठाया जाता है बेचने वाले को और उपभोक्ता को, दोनों की मध्यस्थता में ये मामला सुलटा दिया जाता है। तो इस नए अधिनियम के तहत सामान्य नियमों के अलावा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नियम, साथ ही राज्य और जिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियम बनाए गए, मध्यस्थता के नियम बनाए गए, मॉडल नियम बनाया गया, और साथ ही ई कॉमर्स के जो नियम हैं उससे उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा हुआ। इसलिए आज के ज़माने में हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद CCPC के गठन के बाद सहूलियतें बहुत ज़्यादा हैं।

और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अनुसार 5 लाख तक रुपए का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क भी नहीं लगता है। इसलिए ये बड़ा आसान तरीका है कि हम अगर ठगे जाएं तो हम चुप न रहें, शिकायत करें। चाहे उत्पाद या सेवा के निर्माण में कोई दोष हो या डिज़ाइन में कोई दोष हो, वारंटी नहीं दी जा रही है, प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं वो अगर दोषपूर्ण है तो हम शिकायत कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। यही वजह है कि रेडियो और टीवी के माध्यम से हमें बार बार जागरूक बनाया जाता है कि हम ठगी के शिकार ना हों। जागरूक बनेंगे तभी हमारे जो पैसे की बचत है वो होगी, उसका अपव्यय नहीं होगा। बात इसी तरह जारी रखेंगे, फिलहाल एक गीत सुनते हैं।

बनेंगे, तभी हमारे जो पैसे की बचत है वो होगी, उसका अपव्यय नहीं होगा। बातें इसी तरह जारी रखेंगे, फिलहाल एक गीत सुनते हैं।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोले

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

उस्ताद योजना में ऐसी नीतियों को प्रमुखता दी गई है जिससे पारंपरिक धरोहर जो हमारी है, जिसे आज इस बदलते समाज में बेरुखी का सामना करना पड़ता है, उसमें बदलाव लाया जा सके। और साथ ही इससे ये होगा कि जो पारंपरिक कौशल हैं वो नए डिज़ाइंस का रूप लेने लगेंगे, डिज़ाइन को विकसित किया जाएगा, क्षमता बढ़ेगी उन लोगों की जो पारंपरिक कलाओं में काम कर रहे हैं मगर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हैं। इस योजना से कौशल संरक्षण के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को फायदा मिलेगा। इस योजना की शुरुआत 2015 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी और सरकार द्वारा ये कार्यक्रम इसलिए चलाया गया ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बड़े बाजारों का जो नेटवर्क है उससे जोड़ा जा सके और जो हस्तशिल्पकार हैं उनका विकास हो। 2014 में उस समय की केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 17 करोड़ रुपए की शुरुआती फंड से इस योजना की नींव रखी थी और उस्ताद योजना में 45 साल तक की उम्र के लोगों को 3 से 8 महीने की कुशलता सीखने में हर साल 3,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। कौशल विकास, शिक्षा और कर्ज की उपलब्धता के कारण इस योजना ने उन लोगों को बड़ा फायदा पहुंचाया। इससे ये हुआ कि अशिक्षा, अज्ञानता और गरीबी में जी रहे लोगों को राहत मिली। बाजारों तक पहुंच मिलने से उनकी हस्तशिल्प के जो चीज़ें हैं उनका दाम उनको बेहतर मिलने लगा और पारंपरिक कौशल वाले इन कलाकारों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी जीवन यापन की वो सुलझ गई। उनकी कुशलता को लोगों ने सराहा भी, ये कला लोगों तक पहुंची भी, उचित मूल्य मिला और कलाकारों के डिज़ाइन, उनकी उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए पैकेजिंग और प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान और भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने मदद की, जिससे इन समुदाय के लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। तो साथियों, ये जानकारियाँ इसी तरह से साझा होती रहेंगी, बातें इसी तरह करेंगे। अब एक गीत सुनते हैं परिणीता फिल्म से।

आइए साथियों, आप जानते हैं एक ऐसी योजना के बारे में जो केंद्र सरकार ने इसलिए शुरू की ताकि वो अल्पसंख्यक समुदाय जो पारंपरिक कला और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं उनको आगे लाया जा सके, इन लोगों का कौशल विकास करने के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए, साथ ही उन लोगों से ये कौशल ये प्रशिक्षण दूसरों को दिलवाने के लिए एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है उस्ताद योजना।

साथियों, अब जानकारी लेते हैं हम इस विषय पर जो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर युवाओं के लिए। स्मार्टफोन की इस दुनिया में हम जितने ज़्यादा खोए हैं, उससे हमारी हेल्थ पर जो प्रभाव पड़ा है, उसमें सबसे बड़ा जो असर है वो ये है कि नींद की जो क्वालिटी है, यानी कि गुणवत्ता, वो ख़राब हो रही है। सोते तो हैं 8-8 घंटे, मगर फिर भी जब उठते हैं तो रिफ्रेश्ड फील नहीं करते, यानी कि तरोताज़ा महसूस नहीं होता। कारण? उसमें कारण तो कई हैं, मगर सबसे बड़ा कारण ये वजह ये बनती है कि सोने से पहले हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना या फिर लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन का उससे दूरी नहीं बनाते। अगर हम ये कर लें कि अपने सोने से तकरीबन 1.5 घंटा स्मार्टफोन से दूरी बना लें, तो बड़ा फ़ायदा होता है। नींद की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, बड़ी गहरी और अच्छी नींद आने लगती है। साथ ही ये किया जा सकता है कि देर तक सोने के बजाय जल्दी सो करके जल्दी उठा जाए। कोई व्यक्ति सोता तो रात के 2-3 बजे है, उठता है 10-11 बजे, ये सोचकर कि 8 घंटे की नींद ले ली है, तरोताज़ा महसूस होगा, मगर होता ऐसा है नहीं। तो अगर संभव हो तो कोशिश करना चाहिए कि 10, 11, 12 बजे तक सो लिया जाए, जितना जल्दी संभव हो सो जाए, और सुबह जब अपने आप बिना अलार्म से नींद खुल जाए तब उठें। अगर ज़रूरी नहीं है तो अलार्म ना लगाएं, अपने आप प्राकृतिक नींद एक बार जब आँख खुल जाए तो उठ जाएं। ऐसा करने से बड़ा सुकून महसूस होगा। किया ये भी जा सकता है कि संभव हो तो छत पे या बाहर कहीं खुली हवा में सोएं। इससे ये होगा कि जैसे ही दिन उगेगा, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी और जो ठंडी हवा चलेगी या फिर सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ेगी, तो सुकून में

महसूस होगा। ये भी एक तरीका है अपनी नींद को बेहतर करने का। दरअसल दिन भर हम जब फ़ोन चलाते हैं तो ढेरों रील्स देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, जिनमें ज़्यादातर कोई आधे मिनट की होती है, कोई एक डेढ़ मिनट की अवधि की। इससे होता यह है कि ब्रेन जो है वो ज़्यादा काम करता है। जितना ज़्यादा मस्तिष्क काम करेगा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कूदेगा, वो उतना ही थक जाएगा। बहुत लोग जब खाली बैठे होते हैं तो रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, यानी एक के बाद रील्स देखते रहते हैं, चाहे वो उन्हें याद रहे या ना रहे। मगर इसका नुकसान बहुत है। ये टाइम पास जो है ये हमें बहुत महंगा पड़ता है। इससे होता ये है कि लोग खाली बैठ ही नहीं पाते। खाली बैठने पर उन्हें एंजाइटी यानी कि घबराहट होने लगती है, परेशान होने लगते हैं। जबकि बुज़ुर्गों को अगर देखा जाए तो वो कई मिनट, कई लोग तो कई कई घंटे शांत बैठे मिल जाएंगे प्रकृति को निहारते हुए। वो कुछ काम भी नहीं कर रहे होंगे तो भी वो शांति महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो जिस समय में हैं उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत गर्मी में भी वो अपने आप को इतना परेशान नहीं होने देते, बहुत सर्दी में भी नहीं होने देते, मगर हम जितनी सुविधाएं हैं उतने ही परेशान होते हैं। उतनी बेचैनी और तकलीफ बढ़ रही है, कारण ये है कि हमने अपने आप को प्रकृति से दूर कर लिया। बिल्कुल बेशक बड़े शहरों में जब हम होते हैं तो इतना समय नहीं मिल पाता, ना ही इतनी बड़े बड़े घर होते हैं कि खुली हवा में बैठा जाए और पेड़ों की छांव के नीचे बैठ सकें। मगर फिर भी पार्क हैं आसपास तो वहां जाया जा सकता है। साथ ही युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है हेयर फॉल। वो भी इसीलिए होता है कि हम फ़ोन के चक्कर में अच्छा खान पान भूल गए हैं। हमें फ्रूट सलाद खाना चाहिए, पौष्टिक आहार, संपूर्ण आहार जिसके अंदर सलाद भी हो, फाइबर हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी फैट, ये सब मौजूद हों, वो डाइट खानी चाहिए। मगर हम खाते हैं, जायका हमें पसंद है फास्ट फूड का, जो कि हमारे गट हेल्थ यानी पेट के लिए अच्छा नहीं होता, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बाल भी गिरते हैं। नींद अच्छी लाने के लिए एक और उपाय है कि हम प्राणायाम करें, योग करें, और कुछ कसरत दिन भर में ज़रूर करें। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कुछ कदम टहलें। खाना खाने के बाद 5-10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए और उसके बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है, खाना अच्छे से पचता है और नींद बेहतर आती है। खाना अच्छे से नहीं पचे तो एसिडिटी की वजह से भी नींद अच्छी नहीं आती। इसलिए करना ये चाहिए कि सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे एसिडिटी नहीं होती यानी तेजाब नहीं बनता और नींद अच्छी आती है। और सबसे ज़रूरी जो आज के समय में है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, वो है ध्यान। ध्यान वो विधा है जो हमें शांत करती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि अगर वो दिन में 10-15 मिनट भी ध्यान करते हैं तो जब सोते हैं तो कम सोना पड़ता है, समय की बचत होती है। इसलिए साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्राणायाम, योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। बेशक बहुत कम समय के लिए करें, मगर करें ज़रूर, इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक बहुत अच्छा तरीका है ध्यान का कि अपने श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए, आती हुई सांस को और जाती हुई सांस को देखा जाए। जिस तरह से सांस नेचुरली अपनी स्पीड से आ रही है, आने दें, जिस तरह से जा रही है, जाने दें। बड़ा आसान तरीका है, करके देखना चाहिए, इससे बड़ा फ़ायदा होता है।

हम एक नज़र डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। 1883 में आज के दिन जन्म हुआ शिव प्रसाद गुप्ता का, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी और संस्थापक थे दैनिक आज, पत्रकार पत्र के, और उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी और साथ ही भारत माता मंदिर का निर्माण करवाया था वाराणसी में। आज ही के दिन 1921 में जन्म हुआ था पीवी नरसिम्हा राव का, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। और साथ ही आज के दिन देहांत हुआ प्रसन्नता चंद्र महलनोबिस का, जो कि एक स्टैटिस्टिशियन थे, यानी उन्होंने डेटा पर काम किया और भारत के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के वो फाउंडर थे। उन्होंने इस संस्था की नींव रखी और नेशनल सैंपल सर्वे में उनका बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही आज के दिन देहांत हुआ जमशेद जी फ्रेम जी मदन का, जिन्होंने पारसी थिएटिकल कंपनी की स्थापना की थी और साथ ही मदन एंड कंपनी की स्थापना की थी। संसार में आज के दिन क्या इतिहास रहा? क्वीन विक्टोरिया को आज ही के दिन 1938 में वेस्टमिंस्टर एबे लंदन के अंदर रानी बनाया गया था, और यही था आज के इतिहास में। जाते जाते एक और गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है उमराव चाँद।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। वीडियो वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM 909 किलोहर्ट्स पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर। ये प्रसारण आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी सुन रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं, कार्यक्रम सुने। कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले सुने जानकारी हमारे सभा के शेष प्रसारण के संबंध में शाम 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की, आज आप सुनेंगे इसकी 20वीं कड़ी। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आप सुनेंगे शाम 7 बजे से। रात 10:45 पर कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे। ये थे हमारी सभा के शेष प्रसारण और उनका प्रसारण समय। कार्यक्रम विवरण में सुने जानकारी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:50 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे 6:10 पर। चिंतन का समय रहेगा 6:45 का। कार्यक्रम खेतिहारा वास्ते में किसान भाई सुनेंगे जानकारी बीजोपचार के लाभ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:10 पर। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस पर आधारित गान पाठ मानस गान आप सुनेंगे 7:20 पर। कल आप सुनेंगे इसका 289वां भाग। सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर। चर्चा के विषय रहेंगे संस्कार और संस्कृति, योग का महत्व, सोने और जागने का सही समय। राजस्थानी लोक संगीत का आयोजन होगा मरुमंगल प्रातः 9:10 पर। कलाकार होंगे मणिराम राठौड़। प्रातःकालीन सभा में फिल्म संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम दिन में 10 बजे और गीत बहार कार्यक्रम दिन में 11 बजे। गीत बहार आपकी फरमाइशी पर आधारित कार्यक्रम है। आप अपनी फरमाइशें जो हैं, जो भी आप सुनना चाहते हैं, वो आप हमारे केंद्र तक प्रेषित कर सकते हैं। 12 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम विवरण के लिए। 12:05 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। 12:30 पर चंद गजलें आप सुनेंगे सुगम संगीत के अंतर्गत। संक्रमण काल में पशुओं के पोषण का ध्यान कार्यक्रम खेत खलियान में जानकारी का ये विषय रहेगा। समय रहेगा 12:50 का। बहने सुनेंगी महिला जगत अंकिता अरोड़ा के साथ दिन में 1:05 पर। जानकारी के बिंदु रहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, हाई ब्लड प्रेशर में कैसे योग करें, बच्चों में डालें रीडिंग्स की हैबिट और नेचुरल स्किन हैक्स। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे। 6 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम विवरण के लिए। 6:05 पर कार्यक्रम होगा सराय की। ग्रामीण परिवार सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम चौपाल शाम 7 बजे सुनील वर्मा के साथ। फिल्म संगीत 7:45 पर। 8 बजे आप सुनेंगे एक ही फिल्म से।

इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी का, ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब सुने सराय की।

ने सब को अपना आशीर्वाद दिता ते यकीन दिवाया ते मिर्ख शाह दे जुल्म तों मुक्ति दिवावण दा भरोसा भी दिवाया। हिंदू समाज च खुशी दी लहर फैल गई ते मिर्ख शाह को भी जेड़े वेले खबर मिली तां वो अपने वजीर आहा को खबर दी सच्चाई दा पता करन वास्ते सिंध दरिया दे जित्थां हिंदू लोग पूजा पाठ करन दे पे हन भेजा। आहा सिंध दरिया ते जेड़े वेले पहुँचा रात को हूँ अजीब नज़ारा दिठा जिंदे विच साईं झूले लाल एक घोड़े ते सवार थी के हथ तलवार गिद्दी हुई ते पानी दे उत्ते चलदे आंदे ने। आहा को मिर्ख शाह को पैगाम देवण वास्ते उन्हें फरमाया आहा वजीर दे नाते हूँ को समझावे ते वो अपनी हठ धर्मी को छोड़ देवे अपनी प्रजा को अपनी औलाद वांगू रखे हुंदे हुने को अपने तरीके नाल हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन भी रावण की खुली छुट्टी देवे क्योंकि सब ईश्वर रब हिको ही है। असा सारे हुंदी औलाद हैं हिंदू होवें या मुसलमान हिंदे च कोई भेदभाव न रखा वजे। मिर्ख शाह ते हुंदे दा सारा झुग्गा खत्म थी वे सी अगर वो मेरी गाल न मर मन सी हुकु ही दुनिया विच ना इस्लाम बचसी तो ना मुसलमान बचसी। हुने ए भी आ को दस्या मैं जल्दी मिर्ख शाह को खुद मिलन आसा। साई रतन राय ने अपने बाल को पढ़न वास्ते यानी शिक्षा दे वास्ते दीक्षा दिवाउन दे किसे गुरु गोरखनाथ कोलो भेजा। गुरु जी ने थोड़े अरसे दे विच पहचान कीता कि झूले लाल ते भगवान वरुण दे अवतार हैं ते हुने को पूरे वेद पुराण गीता ग्रंथ दे इलावा बिन्ने धर्में दे ग्रंथ ते महापुरुषों दे जीवन दा ज्ञान पहले तो ही है। यीशु मसीह बाइबल मुहम्मद साहब ते कुरान भी ते जैन मत बौद्ध मत दा भी ज्ञान है। मिर्ख शाह को हर वेले झूले लाल दे चमत्कार सुपने विच ही आवन लग पे ते वो हुंदे कत्ल दा सोचन लग पिया। मिर्ख शाह अपने वजीर यूसुफ को जहर का प्याला पिलावण वास्ते झूले लाल दे घर भेजा। दूर तो झूले लाल जड़ा हूँ वेले झूले दे विच सुत्ता होया है जोर दा फूका मारा ते जहर दा प्याला परे जमीन ते ढह पिया ते जित्थां जहर डठी उत्थां हूँ वेले भा लग गई। वजीर हैरान थी गया वो अपनी जान बचाने वास्ते उत्थों भज गया। वजीर ने वापस बादशाह को सारा हाल सुनाया लेकिन बादशाह को पखंड समझा ते हूँ झूले लाल को कई हालत विच भी हथकड़ी विच बद के पेश करन दा हुक्म दिता। मिर्ख शाह दे सिपाही जेड़े वेले झूले लाल साई को पकड़ गए उन्होंने साई झूले लाल को दरियाए सिंध दे विचों घोड़े ते हथ विच तलवार ते हुंदी सेना नाल डिठा ते निकलदे डिठा। मिर्ख शाह ने सारे सिपाही हुंदे मारे गए। बादशाह ने एक दफ़ा फिर अपनी फौज को हुक्म दिता ते झूले लाल ने कई तरह भी वो पकड़िया वजे वो हूँ को पकड़ न सके। वो बादशाह की फौज जेड़े वेले उनके सामने लड़न वास्ते तैयार थी कि आवे तो सारे के सारे वो हूँ वेले मार दिते वजन। बहु वड़ी अंधारी जी आ गई रेत मिट्टी नाल चारों तरफ गुबार छा गया ते झूले लाल ने अग्नि का आह्वान किया ते महल को ते हुंदे बादशाह दे तख्त को भा दे वांगू सड़न दी महसूस थीवन लग गई। भा दियां लपेटां दे विच वो सारे हुंदे बाल बच्चे सब हुंदे जान दे वास्ते पै गए ते उन्होंने फिर अपने आप को झूले लाल को अर्पण किया। जय झूले लाल दे नारे लावन लग पे ते मिर्ख शाह अपने बालें बच्चों दे नाल साईं झूले लाल दे पैरीं पै गए ते माफ़ी मंगी ते साईं झूले लाल दी शरण विच आ के उन्होंने माफ़ किया ते सारियां को उन्होंने सिंधु नदी दे विच इशनान करन दी सलाह दित्ती ते जोत जलवाई। मिर्ख शाह को हिदायत कीती जो हिंदुओं को तंग ना करे ते अपने धर्म दे मुताबिक पाठ पूजा करन देवे मुसलमान ना बनावे। ही तरह मिर्ख शाह को अपना चेला बनाया। साई झूले लाल दे पिता साई रतन लाल ते झूले लाल को भी महसूस किया कि भगवान दा अवतार हैं लेकिन साई झूले लाल दे वड्डे डू भिरा उन्होंने ही को भगवान ना मन्या ते पूजा करन तो इनकार कर दी। साईं झूले लाल ने जल ते जोत नाल सारे शहर वाले को पूजा करवाई वरुण भगवान दा मंत्र जपन करन वास्ते आख्या। पगुर लाल साईं जड़ा हुंदा चेहरा भिरा ही झूले लाल दी शरण विच दीक्षा घिन हुंदा चेला बन गया ते हुंदे माँ प्यो को हुकुम भगवान दा रूप जाणा मत्था टेकिया लेकिन हुंदे भिरावां ने हुकुम ही दरियाई पंथ को कबूल ना किया। साईं झूले लाल ने संत पगुर लाल को अपना उत्तराधी बनाया ते हुकुम

सुफियाना कलाम तुसा नुसरत फतेह अली खान ते साथियां दी आवाज़ विच सुनदे पए हवे। हुण प्रोग्राम दे आखिर विच तुहाको सुणवेंदे हां एक मुल्तानी काफ़ी पूरन चंद वडाली ते साथियां दी आवाज़ां विच।

अभी आप सुन रहे थे सरायकी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद शाम 6:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और उसके बाद लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण मैच की समाप्ति तक आपको सुनवाया जाएगा। ये प्रसारण बारी बारी में हिंदी और अंग्रेजी में आप सुन सकते हैं, और इसका प्रसारण DRM मीडियम वेव और FM बैंड पर किया जाना है। केवल समाचारों के लिए मैच का प्रसारण बाधित रहेगा, उसके अलावा निरंतर आप क्रिकेट मैच का प्रसारण सुनेंगे। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। शाम के 6:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह

0: मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर
1: नहीं बल्कि सेमीफाइनल का दरवाजा खड़ा है। दक्षिण अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत का जीतना जरूरी है। जीत तो अंतिम चार का टिकट, हार तो विश्व कप का सपना यहीं थम जाएगा। ऐसे में हर चौका सिर्फ रन नहीं होगा, हर विकेट सिर्फ सफलता नहीं होगी, ये होगा करोड़ों भारतीय दिलों की उम्मीदों का जवाब। तो क्या लॉर्ड्स की बालकनी आज भारत के जज्बे की गवाह बनेगी? क्या ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रुकेगा या फिर इतिहास एक नया मोड़ लेगा? मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। फर्स्ट बॉल 20 में मेरे साथ है मेघा और हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं, पूर्व क्रिकेटर ख्याति गुलानी, बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
0: उन्होंने कहा कि आज देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं
2: and you yet the combination does not look convincing.
3: Definitely, you must have seen that they have been trying their best in the series, but I'm sure that the best is yet to come. And the sloppy and scratchy fielding, definitely it was the reason for not performing in the previous matches. In the coming matches, I'll see. I mean, this is very important, this match. And I'm sure that the players like Richa Ghosh and if you talk about Deepti Sharma, they are yet to perform, they are yet to give their best.
1: सौमित्र, टॉस में बहुत ज्यादा समय नहीं है, लॉर्ड्स के पिच को देखते हुए बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है पिछले कुछ समय में, क्या लगता है क्या होने वाला है? चलते हैं टॉस के।
0: एशिया में बने युद्ध के हालात के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
4: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग
0: किया। शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख करते हुए योजनाओं की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी दूसरे लोगों तक साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने एआई टूल्स को देश की संस्कृति और भारतीय ज्ञान तथा भाषाओं के संरक्षण के काम में लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने आगामी महीने में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। मन की बात कार्यक्रम सुनने को लेकर प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह रहा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में अपने निवास पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ ये कार्यक्रम सुना। वहीं पाली, बाड़मेर और जैसलमेर सहित विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: ने टॉस जीता है और भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। सौमित्र, हम चर्चा कर रहे थे, बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है, कैसे देखते हैं इस निर्णय को
0: 51,000 crore रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
5: इंडिया बैटिंग
6: केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा,
5: टीम चेंजेस में आपको दिख रहे हैं
6: जीवन मूल्य
5: है, तीन मैचेस नहीं खेले
6: और हमारी
5: फ्रेश इंजरी थी, नहीं पे आएंगे। दिस इज अ बिग मैच फॉर हर और शी कैन बी

0: द इम्पैक्ट फैक्टर जिसे आपने बोला, ये इस तरह का मैच उन्होंने ग्रामीण
1: विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और मजबूत करने और गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से सुझाव और नए विचार आमंत्रित किए। इस अवसर पर श्री चौहान ने ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं सहित आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज रिफाइनरी का अवलोकन किया। श्री शर्मा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जोधपुर में एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल का मुआयना किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
2: रविंदर, हमने तब्दीलियों का जिक्र किया, आज के इस मुकाबले में एक बदलाव है। नंदिनी की जगह पर क्रांति करेंगे, मौका मिला है।
1: इस डिपार्टमेंट में खास करके स्टेबिलिटी नहीं देखने को रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के तहत बालोतरा जिले में 7 दिन का विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन आज प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और विधायक अरुण चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: साथ ही अगर दोनों टीमों की बात करें तो 38 T20 मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 27 जीते हैं, भारत ने 10 में विजय प्राप्त की है और एक मैच बेनतीजा रहा है, परिणाम नहीं निकला है। जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने होते हैं और ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हम इसे कह सकते हैं, किस तरीके का टोटल होता है, क्या जो टीम जीत टॉस जीतने के बाद होगी उसमें इस पर चर्चा होगी, क्योंकि आप कोच भी रह चुकी हैं डोमेस्टिक सर्किट में, या फिर ये होगा कि पहले पावर प्ले देखते हैं उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे।
1: जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरिस्का बाघ परियोजना आज दुनिया की सफल बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में गिने जाते हैं। वर्तमान में यहाँ बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है। आज अलवर के सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापन अवसर और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ये कार्यशाला ऐसे समय आयोजित हुई है जब सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना ने 18 साल पूरे कर लिए हैं। श्री यादव ने कहा कि बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को कार्यशाला में वन मंत्री संजय शर्मा, देश भर के बाघ संरक्षण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, वन अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रधान वन्य जीव प्रतिपालक उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लक्ष्य सरकारी प्रयासों के साथ जन भागीदारी से संभव है। श्री बिरला आज कोटा के दादाबड़ी क्षेत्र में रेंडल पार्क में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर, गली, पार्क और मोहल्ले को स्वच्छ रखने के साथ पौधरोपण और उनके संरक्षण का संकल्प ले तो कोटा सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में अपनी अलग पहचान बना सकता है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल जीवनचर्या अपनाने और पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
0: इस लेवल पे मैचेस देखे, इंडिया हैव ऑलवेज लॉस्ट दिस काइंड ऑफ मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इट डजंट मीन, अगेन हिस्ट्री डज नॉट मीन एनीथिंग एल्स, बट द पॉइंट इज दिस, आज अगर आप देखिएगा वो बैट्सर नंबर 3, वो बैट्सर नंबर 4, वेयर डज हरमनप्रीत बैट, अब शी इज बैटिंग एट 6, शी इज बैटिंग अप, तो ये इंडिया हैव गॉट अ वेरी अनसेटल्ड लुक अबाउट देम,
4: उसको बड़ा भी करेंगे,
0: व्हिच इज वेरी वेरी स्ट्राइकिंग फॉर अ टीम दैट हैज वन अ वर्ल्ड कप एंड द कोच एट द कोर ऑफ द टीम रिमेंस द सेम।
1: लोकसभा अध्यक्ष ने रेंडल पार्क में उपलब्ध खेल सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोटा में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के सुमेरपुर में मानसून के आगमन से पहले युवाओं ने बड़ी संख्या में सीड बॉल्स तैयार की है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
0: शायद यही बैटिंग देखेंगे, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी वेदर हरमनप्रीत बैट, हाउ मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स, बिकॉज व्हेन द कैप्टन टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही स्कोर्स द रन्स, आई जाने वाली दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और ओपनर्स जैसे आपने कहा, दे आर फेयरली ऑलराइट, स्मृति मंदाना इज अमंग द टॉप स्कोरर्स, शिफाली इज गॉट रन्स, यस उपजाऊ परफॉर्मेंस और देसी खाद के वेरी वेरी गुड का उपयोग किया
3: गया है। रविंदर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जेमिमा की भी फॉर्म इस पूरे टूर्नामेंट में सवालिया निशान पर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यास्का भाटिया और भारती फूलमाली में भी चर्चा हो रही थी कि शायद उनको इस मैच में वापस लाया जाए प्लेइंग 11 में, लेकिन यास्का के साथ गई है।

0: कॉल की
1: तीन दिन की
0: टीम अगर हम बात करें किस तरीके का टीम में माहौल होगा इस समय, क्योंकि नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव कहीं ना कहीं अनसर्टेन रहा है इस टूर्नामेंट में।
1: प्रदेश में
0: बिल्कुल अनसर्टेन रहा है, तभी ये मैच, ये जो टूर्नामेंट इस कंडीशन में आया है। आप देख रहे हैं 15-16 लोग खेल रहे हैं, अगर आपकी एक कॉम्बिनेशन बना रहता है तो 11-12 लोगों में ही काम टूर्नामेंट पूरा चल जाता है। बहुत कम होता है कि आप 15-16 लोगों में खेलिए। बैटिंग में दिक्कत रही है इसमें भी, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप है ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर ये है कि अब उस स्ट्रॉन्ग को उसको एग्जीक्यूट करना है, और इससे आज से बड़ा ये मौका कभी मिल नहीं सकता। आज इनको पता है डू और डाई है, आज नहीं करेंगे तो फिर आप
1: बीते 15 वर्षों में देश भर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 2 जनवरी 2014 को
2: इन द थ्री प्रायर गेम्स शी स्ट्रगल्ड, इज शी समबडी हु वांट्स दैट रोल क्लैरिटी, दैट पोजीशन क्लैरिटी।
1: फिर से कुछ कमी आई है, इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। उधर चूरू में दिन भर की तेज गर्मी के बाद आज शाम को बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं सिरोही और आबूराज में दिन भर बादल छाए हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के कुछ स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। मुख्य समाचार एक बार
3: इतना तो आई थिंक अब सेम कोच है इतने साल से, तो सेम मैनेजमेंट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20 में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले श्रोता, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: केंद्रीय विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गाँव की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार
0: मित्रों, यहीं से इनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। 3 में से 1 कैच भारत ने ऑन एन एवरेज इस टूर्नामेंट में छोड़े हैं, जो बड़ा कंसर्न है। कहीं ना कहीं वशिष्ठ से साइड के नजरिए से देखें पूरे टूर्नामेंट में बहुत सारे कैचेस छूटे हैं, लेकिन इंडिया को आज के मैच में बहुत ध्यान देना पड़ेगा।
5: जिले भर में 4 मैचेस में 11 कैचेस, अभियान के तहत 5 मैच बांग्लादेश के साथ, पहला 5 ओवर में 4 कैच, दवा पिलाई गई। 3 दिन के इस अभियान में सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर भी ट्रांजिट बूथ स्थापित किए गए। आज दवा पीने से छूटे बच्चों को अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी।
6: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाया गया।
5: जिला स्तरीय मुख्य आयोजन मान क्लब फुटबॉल मैदान में रखा गया, जहाँ प्रभारी सचिव पीसी किशन और जिला
6: को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, आपको पूरा पूरा मैच में 40 ओवर में
5: योगाभ्यास किया। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित योगाभ्यास में अगर आपने सुना हो, न्यायिक अधिकारियों के साथ स्टेट बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने योगासन किए। इसी तरह केंद्रीय कारागार शियालावास में भी योगाभ्यास तथा ध्यान सत्र रखा गया, जिसमें बंदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं का
2: और रविंदर ये बस कैचेस ड्रॉप होने के बाद द्वारा फील्डिंग में भी फंबल्स देखने को मिले। इनफैक्ट बांग्लादेश के विरुद्ध इनिंग्स की आखिरी गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत खुद फील्डिंग के टाइम बॉल को ठीक से पकड़ नहीं पाई, तो वो जो जिटर्स हैं वो ऑलमोस्ट इन्फेक्शियस लग रहे
0: हैं। नशा मुक्ति दिवस पर खेलने जा रहे हैं, आपकी क्या प्रिपरेशन है, आपके कोचेस क्या कर रहे हैं? एक राधा यादव जो इंजर्ड थी, आपने इतनी मोटी बैंडेज थी उसको आपने अंदर भेजा और 3 जो प्लेयर थे बाहर बैठे थे और उसके हाथ से कैसे छूट रहे हो, पकड़ नहीं पाई। मुझे तो इसमें पूरा मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों ने क्या प्रिपरेशन करी?
5: पचवारा नगर पालिका
0: फर्स्ट बॉल 20 के इस कार्यक्रम में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका।
5: समाधान होने से लोगों ने राहत की सांस ली। इसी तरह बांदी कोई मंडावर और लालसोट ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में भी शिविर आयोजित किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र दौसा में पिछले दिनों जैविक खाद से समृद्ध मृदा, आय वृद्धि और पर्यावरण संतुलन विषय पर किसान गोष्ठी रखी गई। संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को संरक्षित और उर्वरक खेती की जानकारी प्रदान की।

0: किसानों को मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जिले में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की पिछले दिनों लॉटरी निकाली गई। योजना
1: के तहत के टोटल की बात की, भारत और ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्व कप में जब भी आमने सामने आए हैं, भारत का सर्वाधिक टोटल करेंगे।
0: इनमें से 1150 से अधिक को रेल और 142 को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी।
1: आज पार जिला कलेक्टर
0: डॉक्टर सौम्या झा ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्मिकों से किसी भी आपात स्थिति में हर समय तैयार रहने
2: को कहा। यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना होगा और सबके कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, और आई एम श्योर उस बारे में बात बहुत ज्यादा हुई होगी मैनेजमेंट में। एंड लास्ट वर्ल्ड कप में भी ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इस बारे में डिस्कशन चल रही थी कि किस तरीके से हम कॉन्ट्रीब्यूट करें। बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी जो मुझे बाद में पता चला कि किस तरीके से अमोल मजुमदार ने बात करी और मोटिवेट किया प्लेयर्स को, उनमें ट्रस्ट दिखाया। तो आई थिंक ये सेम सिचुएशन है, इस बारे में बात हुई होगी।
0: जिले में मुहर्रम पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में
3: श्रोता
4: को बताना
0: सहित जगह जगह धार्मिक गतिविधियां देखी गयी। दान पुण्य के आयोजन हुए, लोगों ने पानी, शरबत और पेय पदार्थों के साथ भंडारे लगाकर पुण्य कमाए। ज्येष्ठ महीने में कई रंग दिखाए, एक्सपीरियंस वाइज ऑस्ट्रेलियंस को मच हायर प्रभावित किया। इस दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों से कई जगह
4: आप देखिए, बट इंडिया इज नो
0: शॉर्टेज ऑफ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त।
4: बट एक्सपीरियंस काउंट्स फॉर नथिंग इफ वी डोंट स्कोर। Experience counts for nothing if you don't hold your catches. Experience counts for nothing if you don't take wickets.
5: आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं पेश है सिंह का प्रादेशिक समाचार।
4: And as I said that you know it is all in the mind. आपने जो सवाल किया उसके लिए इंडिया हैव टू टेक ओवर बाय ओवर, यानी कि रश करके हमने इतना सेट बनाना है।
5: पावर प्ले आई थिंक यू हैव सीन
4: द फर्स्ट फ्यू मैचेस वेयर इंडिया स्कोर्ड 10 एंड ओवर।
5: नरेंद्र मोदी कयो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देव का भारत बत्ती हिफाजति और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय कामाये विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान
4: विकसित भारत 2047
5: नजरिया ने साकारकरण में गांवारी भूमिका ने महत्व बताया है।
4: सरिस्का माय
5: भाग पुनर्स्थापना 18 साल पूरा विया।
4: केंद्रीय
5: वन मंत्री भूपेंद्र यादव कयो बाघ संरक्षण में
1: जी हाँ थोड़ी बल्लेबाजी की बात करते हैं। रविंद्र स्मृति मानधना भारत की तरफ से सबसे सफल बैटर हैं इस वर्ल्ड कप में 4 मुकाबलों में 167 रन। लेकिन मैचअप की बात करें तो एश गार्डनर ने T20 मुकाबलों में 10 बार आउट
6: किया। उनका जो होमवर्क है वो बहुत तगड़ा है, वो हर प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। सबसे बात और बाकी ये बाकी एक दूसरे के साथ उनको पता है बैटर्स हैं। इंडियन की टीम में जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, हरमनप्रीत है, शेफाली है और स्मृति है, इनके ऊपर उन्होंने जरूर होमवर्क कर दिया होता है। अब देखिए पहले जितने भी T20 होते हैं ऑलमोस्ट सारे ही उनकी विक्ट्री रही है। देखिए डिपेंड करता है कि आपका स्कोर 160 डिपेंड वो नहीं होता, आप 160 में भी जीत सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप फील्डिंग करते हैं उसके हिसाब से अगर आप 180 बना दें 190 बना दें तब भी आपको जीतना मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए वो प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत ही प्लान तरीके से खेलने आते हैं उनके। देखिए किसी भी बता रहे हैं उन्होंने बताया कि टॉप 10 में कोई भी नहीं है, लेकिन वो टीम वर्क है सारा। नीचे वाले भी जाकर बैटिंग कर रहे हैं, 8-8 प्लेयर बॉलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और हर ये 160 रन तो बनाएं अगर बनाते भी हैं, लेकिन उसके बाद आपको पूरे फील्डिंग जो जज्बा दिखाना पड़ेगा उसी का जीत पाएंगे। नहीं तो आप 180 रन करके भी जो फील्डिंग कर रहे हैं
3: उसमें भी कुछ फायदा नहीं होगा। नाउ ख्याति फ्रॉम वन ओपनर टू द अदर, शेफाली वर्मा हैड स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप्स, दो शेड फीचर इन मल्टीपल ऑफ दोस सिंस 2020, बट दिस एडिशन गॉट टू ऑफ दोस। दो ऑस्ट्रेलिया वुड लाइक टू एक्सप्लॉइट हर वीकनेस अगेंस्ट शॉर्ट बॉल्स।
7: मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए,

0: खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह
1: बैडमिंटन
0: मेरी
1: भी
0: अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: श्री मोदी हमारी सरकार का नियो स्वरूप करी जी नई सामाजिक हिफाजती योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना रो जिक्र करता योजना की प्रगति जानकारी दूजा लोगों तक साझा करने अर्ज करी। श्री मोदी एआईओ टूल्स ने देश की संस्कृति और भारतीय ज्ञान और भाषा
3: बहुत ज्यादा काम दूसरे को जानते हैं। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार स्वागत है आपका।
2: प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश रा कई हल्का माए गाँव ने साफ सुथरा बनाया राखण सारू करी जा रही कोशिश रोजिक रो करियो वना आवता मीना
3: नमस्कार
2: गणेश उत्सव री तैयारियां माए लाग्या मूर्तिकारों माटी बनी मूर्तियां बनावण और खरीदारों प्लास्टरों पेरिसों बनी मूर्तियां नी खरीदण री अरज करी। मन की बात कार्यक्रम सुनने ने लेर प्रदेश माए लोगा माए खासो उमाव नजर आयो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर माए आपरा रहवास माते सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा माए चुनी जा उम्मीदवारों रे साथे ओ कार्यक्रम सुनियो। श्री शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री रा संबोधन आमजन ने देश माए वेरिया सामाजिक सरोकारों
3: तेज गेंदबाजों को लेकर बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं रविंदर।
4: देखिए बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास और रुकी रही
2: रेणुका ने बॉल किया
4: और उनकी बात गॉड है, लेकिन अब जैसे जैसे अब ये अब भारत में अब क्रिकेट वुमेन्स के लिए बहुत पॉपुलर हो जा रहा है। देखिए लोकल डिस्ट्रिक्ट में लीग चल रही है उनके लिए और अब तीन चार पांच साल में जिस हिसाब से इनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है जो बीसीसीआई द्वारा उसमें आपको बहुत ही जल्दी आपको और भी अच्छे और टैलेंट देखने को मिलेगा। छोटी छोटी जगहों से काफी निकल के आ रही हैं प्लेयर में देख रहा हूँ, लड़कियां भी काफी निकल के आ रही हैं झारखंड से बिहार वगैरह से, तो ये आपको जल्दी थोड़े दिनों में और भी अच्छा टैलेंट देखने को मिलेगा।
5: Rajya ra yogdan samet 1,51,000 crore easy conditions and second a lot of pace bowling all rounders got injured ahead of the world cup getting back to india's batting somitro harmanpreet kaur somehow hasn't looked in rhythm there's no pattern to her dismissals but she's been struggling to score runs
6: fluently samriddhi ke kendra rahe hamari taakat bhi gaon hai aur hamari sambhavna bhi gaon hai gaon hamare loktantra ki sabse mazboot ikai bhi aur aaj ka sammelan gramin confident
2: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बालोतरा रहा पचपदरा माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात तय दौरा ने रिफाइनरी ने देखा। श्री शर्मा कार्यक्रम की तैयारियां ने लेर एहलकारा ने लेर मीटिंग कर रिया है। इनो पहला मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट रा नुआ टर्मिनल भंग रोई जाए जुदियो ई दौरान वना मीडिया साथे बतल माए कहो कि प्रधानमंत्री आपका 4 जुलाई ने ई नुआ टर्मिनल रो लोकार्पण करेला।
3: ख्याति हमने बहुत बात की भारतीय टीम की, थोड़ी चर्चा ऑस्ट्रेलिया की भी कर लेते हैं। किस रणनीति के साथ वो इस मैच में उतरेंगे?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 4 जुलाई ने तय बालोतरा दौरा की तैयारियां ने तय जिला में 7 दिनों खास स्वच्छता अभियान शुरू हुई हो। अभियान का पहला दिन आज प्रभारी मंत्री जोरा राम कुमावत और विधायक अरुण चौधरी समेत जन नुमाइंदा और महकमा एहलकार झाड़ू लगा सफाई के प्रति जाग जगन रोशन देश दियो। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि सरिस्का बाघ परियोजना आज दुनिया री कामयाब बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम में गिन जावे है।
5: उस मोमेंटम के साथ और भी आगे बाघारी तादाद बढ़ने
2: 56 वेगी है। आज अलवर
4: ऑस्ट्रेलिया उनमें अभी ज्यादा कुछ कमियां दिख रही क्योंकि हारी नहीं थी। जब टीम हारती है तभी आपकी कमियां निकल के आती है, जीत जाने पे सारी कमियां छुप जाती है। अगर उस दिन में अफ्रीका के हम मैच जीत जाते लास्ट में तो सारी राधा यादव को याद नहीं कर रहा। आज इनको इसलिए याद करा जा रहा है क्योंकि मैच तो ये डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है उनका। अब ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो एपिक जो राइवलरी है वो आज देखने को मिल रही है डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। आप पहले बैटिंग करने जा रहे हैं
2: पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता जे हर रहवासी
3: खिलाड़ियों
2: की पौधरोपण उनका संरक्षण और संकल्प देवे तो कोटा
3: बैटिंग कहां करेंगे?
7: चार नंबर में किया
1: सात नंबर में सेना

0: उम्र में कि आज कहां करें, कोई तो सवाल मैंने पहले भी पूछा है, आशा है कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या
1: होगा।
0: डोंट फॉरगेट दिस समबडी कॉल्ड दीक्षा, शी इज लाइक द रविंद्र जडेजा ऑफ इंडियन टीम। कहीं पे भी बैट कर सकते, कभी भी विकेट ले सकते, मोस्ट बिजीएस्ट क्रिकेटर इन इंडिया।
1: संरक्षण भी करेंगे,
0: तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। यू कांट गो विद द सेटमैन,
1: और अपने शहर गली गांव को,
0: यू कांट गो विद द सेटमैन, यू कैन नेवर गो विद द सेटमैन, बट यू वुड एक्सपेक्ट दैट योर
2: रेंडल पार्क माय मोहिया खेल सुविधा और जाय जोलियो और
0: नायक योग के
2: आउन वाला भगत माय कोटा माय आधुनिक
0: खेल सुविधा और प्रसार करने जायला। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्टेस्ट लाइक
2: राजस्थान में देश भर में आज 3 दिन रहा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इन रहते देश ने पोलियो मुक्त बनाया राखण सायरू, 5 साल तक राष्ट्रगला टावरा ने पोलियो रोधी खुराक पिलाई जावे। प्रदेश में 1 करोड़ मती टावरा ने दवा पिलाउन रोल लगस राखी जो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज आपरा रहवास माते टावरा ने पोलियो री खुराक पिलाई अभियान की शुरुआत करी। प्रदेश में 59,032 बूथा माते पहले दिन दवा पिलाई जी। आता 2 दिन अबे स्वास्थ्य कर्मी देयर वर क्वेश्चन मार्क्स अराउंड द फिटनेस वेदर शी बी एबल टू लीड ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। नॉट ओनली हैज शी shown herself to be fit enough, she's also delivered consistently 6 wickets in 4 games.
3: कोई पोलियो रोनु होके सामने नहीं आयो है। 27 मार्च 2014 ने भारत ने पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पानो मिल चुको है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली ने बधाओ देवर सारो नौजवान में जाग बदली है। ई कड़ी में पाली जी दरा सुमेरपुर में मानसून आवनो पहला नौजवान घनी तादाद में सीड बॉल्स तैयार कर रिया है।
4: शिफाली वर्मा पर दबाव होकर अविंदर चुकी तेज तर्रार शुरुआत के लिए वो जानी जाती है। अच्छी फॉर्म में दिखाई है, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने पारी खेली लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद बड़ी टीम बड़ा मुकाबला
5: रूप लेगी। देखिए शिफाली एक में बहुत बड़ी प्लेयर है, बैट प्लेयर है, वो जिस हिसाब से बैटिंग करती है, वीरेंद्र सहवाग वगैरह बैटिंग करते थे, अगर वो 6 ओवर में उनको रहते हैं स्टार्ट देती है तो उसके बाद अगर वो विकेट पे रहती है तो ये मैच इंडिया बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उनके जो पॉजिटिव अप्रोच है, उनकी जो बाउंड्रीज निकालना है वो कॉर्ट में इवन किसी भी प्लेयर के लिए तो आसानी से आसानी से शिफाली निकाल पाती है। शिफाली उनकी बल्कि ऑस्ट्रेलियंस की भी लिस्ट में होंगी, उनको पहले आउट करना चाहेंगे शिफाली को, तो उनको पता है शिफाली बहुत एग्रेसिव प्लेयर है, उनको जितना लंबा खड़ी रहेंगी उतना इंडिया के लिए समाचार पाली।
4: जी हाँ बिल्कुल, शेफाली से भी उम्मीदें होंगी। लॉर्ड्स की ऐतिहासिक पिच पर एक मजबूत स्कोर अंक नहीं जोड़ता, बल्कि विपक्षी टीम के मन में भी सवाल खड़े कर देता है। अब निगाहें होंगी भारतीय टॉप ऑर्डर की ठोस शुरुआत पर, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी पर और अंत के ओवर में तेज गति से रन बटोरने की क्षमता पर। फर्स्ट बॉल 20 में इतना ही। रविंद्र जी आपका, ख्याति गुलानी आपका और सौमित्र बोस आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए
2: मानसूनी गतिविधियां बढ़ोतरी री घनी आस जताई है। पहली रा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव री जयंती अर्पण करे। नरसिम्हा राव 90 रा दशक में दुनिया में ये संकट और मंदी रा दौर में भारत ने हिफाजती बारे राखण सारो कुशल प्रशासन रा तौर माथे याद करिया जावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया रा संदेश माए कहो है कि देश रा एक महत्वपूर्ण दौर माए श्री राव भारत री प्रगति माए अमोल योगदान दियो। अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा नजरिया ने साकार करण में गांवारी भूमिका ने महत्व बताया है। सरिस्का माए बाघ पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो बाघ संरक्षण माए राज्य रा अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। और प्रदेश माए 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59,032 बूथा माथे 5 साल तई रा टावरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। इनरे साथ ही प्रादेशिक समाचार रो बुलेटिन अठी पूरो यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
6: मनप्रीत जमीमा रोड्रिग्स परिचय घोष दीप्ति शर्मा राधा यादव श्रीचंद
7: आकाशवाणी के कॉर्डिनेटरी चैनल सूरजपुर से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं
6: आज के इस मुकाबले में शामिल
7: लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बंधे खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ क्यूब कमेंट्री के प्रसारण कुछ ही बोलों में हमारे दिल्ली के
6: खास है जो ये बताती है कि गेंद में गति और उछाल देखने को मिलेगी और घास सूखी है जो ये बताती है कि बल्ले के ऊपर गेंद अच्छे से आएगा और रन ज्यादा यहाँ पर बनने की संभावना। और मेरे साथ हैं अश्विन। नमस्कार अश्विन।
8: थैंक यू

0: से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट बॉलर
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल से
0: हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, 12 विकेट्स ऑलरेडी ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में।
1: रात के 8:45
0: स्टार्ट करेंगे,
1: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या जिसे हम अपने दिल्ली के दूसरे ले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
0: दीप्ति शर्मा इज नोन फॉर टेकिंग विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स एंड ब्रेकिंग द पार्टनरशिप।
2: Soumitra, coming back to Shri Charini, the way she varies her pace, the way she attacks these stumps.
3: आपने देखा होगा कि आफ्टर द 13th ओवर जहां पे आप जॉर्जिया वर्ल्ड
4: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी
3: शायद नोटिस किया होगा दिस इज गुड अगेंस्ट अ टर्निंग बॉल।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। कहा भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन लक्ष्य मिला।
3: दीप्ति जो चार स्पिनर्स इंडियन लिए लेकिन क्रूशियल पॉइंट रहेगा अगर उन 6 ओवरों में दोनों मीडियम पेस करा जाते हैं उनसे बॉल तो अगर वो ठीक
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि पारस्परिक सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ

0: निधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशन की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत निश्चित तौर पर से हिंद महासागर की कल्पना करता है, जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे प्रसन्नता बॉल का पेस सबसे बड़ी चीज में लागू करने के लिए करेंगे
2: तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमेनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमेनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया। और खिलाड़ियों पर लगातार भरोसा जताने के लिए जो कि भारतीय टीम ने भी किया है, इस मुकाबले में रेणुका अपना दूसरा मुकाबला खेलती हुई प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल दारोमदार होगा। इन सारे इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय टीम को ये महत्वपूर्ण जीत दिलाई ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सेमीफाइनल्स के लिए जगह तय करने के लिए। उन्होंने प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही और भारतीय टीम उतर चुकी है 171 को डिफेंड करने। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में भारत स्पेशल सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
3: के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास। बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर
4: डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन। दूसरी पारी का खेल शुरू होने को है। 171 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने। आरंभ बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज काफी आक्रामक खेल।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए राष्ट्र सेशल्स की तीन दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे।
4: रेणुका सिंह ठाकुर
0: लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृह मंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है।
4: रेखा पार कर गई चार रन।
0: जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को
5: ये लगा आभा का चौका
0: को दर्शाता है।
4: कमजोर गेंद जिसे प्रहार किया
0: मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
4: पहली गेंद पर चार रन से खाता खुला ऑस्ट्रेलिया का।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमेनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री अंदर की तरफ आती हुई
4: एलबीडब्ल्यू की अपील, अंपायर विचार करते हुए, मगर किसी तरह का कोई
0: परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय

0: मतदान किया
1: समुद्री सुरक्षा
0: और गेंद पैड से टकराई और टीम इस बात पर विचार करती हुई कि रिव्यू लिया जाए कि नहीं और हरमनप्रीत ने ये रिव्यू ले लिया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो कि आक्रामक बल्लेबाज हैं
0: अगर उनका विकेट प्राप्त होता है तो भारत के लिए ये बड़ी सफलता होगी।
1: श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र
0: की तरफ इशारा कर दिया है कि ये भावना
1: उस समय एक बार फिर दिखाई
0: कि नहीं पहले ये देखा जाएगा
1: युद्ध बल्ले
0: के भीतरी किनारे से लगती हुई पैड से टकराई है कि नहीं इस तरह की कोई संभावना रिप्ले में दिखाई नहीं दे रही है
2: और मैंने देशवासियों से
0: जांग से टकराई
2: है समय के लिए सोना खरीदने से
0: होगा कि लोगों से कहा खाया ये भी
2: विदेश में छाल कितना है मनाने से बचे
0: जा रही थी ये गेंद की नहीं
2: और ये सब कुछ बढ़ावा देने की अपील
0: का रिव्यू
2: किसानों से
0: उसमें
2: केमिकल मुक्त खेती के लिए
0: और जिन्होंने
2: बचाने के
0: विश्वास से पहली गेंद पर चौका लगाया था ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर पिच हुई है और टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई है इंपैक्ट अंदर है और स्टंप से जा टकरा रही थी। अंपायर को अपना निर्णय बदलना होगा। भारत को ये पहली सफलता बॉल के रूप में जो आक्रामक बल्लेबाज हैं वापस लौट रही हैं। दूसरी ही गेंद पर रेणुका सिंह ने भारत को सफलता दिलाई है। अश्विन
1: कि नालंदा विश्वविद्यालय
3: उत्तराखंड ब्रिंग्स इन द स्माइल फॉर इंडियन
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: एंड व्हाट अ स्टार्ट फर्स्ट बॉल बाउंड्री एंड अ ग्रेट कमबैक टू पिक दिस विकेट एंड
1: आई वुड से दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी दैट
3: हरमनप्रीत बिलीव्ड इन
1: विकेटकीपर एंड बॉलर टू पिक दैट विकेट ऑफ आई विल टेक दैट रिव्यू।
0: और पहले ही गेंद जो रेणुका सिंह की थी ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ थी जिस पर बैकफुट पर जाकर ड्राइव लगाया था जॉर्जिया बॉल ने और दूसरी गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ ऑफ स्टंप के बाहर भी थी ये गेंद मगर टिप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई स्टंप्स की तरफ जा रही थी टकरा रही थी। अंपायर को निर्णय बदलना पड़ा और जॉर्जिया बॉल जो कि इस वर्ल्ड कप में काफी फॉर्म में थी जो
1: इस्तेमाल करने की
0: अच्छा आक्रमण कर रही थी गेंदबाजों के ऊपर पिछले मैचेस में इस मुकाबले में ज्यादा सफल ना होती
1: थी। गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का
0: भारत को पहली सफलता रेणुका सिंह के
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण
0: रेणुका सिंह को भी और भारतीय फील्डर्स को भी 171 रन का लक्ष्य मुश्किल बनाना है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये मुकाबला जीतना है क्योंकि साउथ अफ्रीका अपना मुकाबला जीतकर 8 पॉइंट अर्जित कर चुका है। भारत के 6 पॉइंट कि पिछले इस मुकाबले को जीतकर भारत के 8
1: देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ
0: सीधे बल्ले से खेला वापस गेंदबाज रेणुका सिंह की तरफ।
1: कृषि और किसान बनने की कोई संभावना दबाव बनता हुआ ऑस्ट्रेलिया पर। शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत बरकरार रख सकेंगे के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए
0: ये गेंद खराब गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ लेग स्टंप के बाहर ऋचा घोष भी इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। दीप्ति शर्मा ने कुछ गज अंदर इस गेंद को फील्ड करके वापस
1: राज्यों के हिस्से
0: रन भागने का मौका व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ
1: से और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर किया गया है।
4: इस साल बजट प्रावधान है 151,282 करोड़।
0: दबाव बनाने के लिए जरूरी है कि गेंदबाजी में अनुशासन रखा जाए स्टंप्स में गेंदबाजी की जाए मगर इस बार दिशा से भटक गई थी रेणुका सिंह और उसका कारण शायद ये कि बाएं हाथ की बल्लेबाज लिचफील्ड है जिसकी वजह से थोड़ी दिशा बदलनी पड़ती है। थोड़ी समस्या गेंदबाज को आती है विशेष तौर पर तेज गति की गेंदबाज।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत
0: की सफल गेंदबाज इस ओवर की 3 गेंदों में एक सफलता
1: बनाने का आह्वान किया है।
0: अपने ओवर की
1: आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
0: के बाहर पुल करना चाहती थी
1: और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
0: किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। साथ ऑस्ट्रेलिया
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे।
0: जिसमें रनों की रफ्तार को तेज करने का
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर
0: एक बार फिर से दिशा से भटकी रेणुका सिंह जब भी अंदर की तरफ डालने का प्रयास करती हैं तो वो गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर चला
1: जाता है। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई जिनमें 85% बुजुर्ग थे।

0: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इलेडी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूव्र संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटना स्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी
2: डालते समय वो नियंत्रण में।
1: सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जलडम्बू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई।
2: एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर।
1: असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में बिजली की लहर के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है।
3: आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा डाउनलोड करें या डायल करें
4: 1-4-4-7
5: परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं।
4: शर्मा
1: उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे।
4: The first ball was outside Austin, driven nicely for the boundary. एक बार फिर
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आफ्टर जॉर्जिया वॉज विकेट शी हैज स्कोर्ड 2 ऑफ 4 डिलीवरीज। देयर इज मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ कवर, एक्स्ट्रा कवर एज अ फील्ड प्लेसमेंट। दिस टाइम ड्राइव्स नाइसली। देयर इज अ
6: गुड इवनिंग फील्डर राधा यादव हैज टू रन अ लॉट। आई एम निशित कुमार विद द न्यूज़ एट 9 एंड बाय द टाइम शी कट्स इन ऑल 3
4: डिलीवरीज बाय क्रांति गॉड सो फार हैज बीन शॉर्टर लेग बैक ऑफ द लेग डिलीवरीज व्हिच गिव एम्पल ऑफ टाइम for the batsmen to play their drives. Anything with a good length
6: Prime
4: would be
6: Minister
4: nice
6: Narendra
4: to put
6: Modi
4: them
6: holds
4: backfield,
6: delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermani in Victoria. Says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the New Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths.
4: Is a very important match from the perspective. She does the sound, lifts it, and should get a boundary for this. Again, a shorter delivery. Faber Litchfield was quick on her feet. Dances down the wicket and guides it down to a deep mid-wicket region for a boundary
6: in Belfast.
7: ये लगा आभा का चौका।
4: So 19 for 1 with that boundary. They've already scored 8 runs in this over so far.
6: Prime Minister said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and their partnership is based not on size but on mutual respect and trust.

0: It's
1: that
0: India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of
1: opportunity. You need to make them play. You need to make them put some effort to that stroke play this time. Fuller land back to the bowler, but she misses it. And another boundary for Australians. So two boundaries coming in this over. 11 of this, 12 of this over so far. So expensive over from Kranti God. 11 for first over, 12 from second. Two overs gone, 23 for one Australia.
2: ये लगा आभा का चौका
3: साथ साथ चले
4: आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंडियन ओशन समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर
0: मिस्टर मोदी वाज एड्रेसिंग द जॉइंट प्रेस मीट आफ्टर डेलीगेशन लेवल टॉक विद सेशल्स प्रेसिडेंट पैट्रिक हर्मेन इन विक्टोरिया ड्यूरिंग द मीटिंग द टू लीडर्स रिव्यूड द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट
5: टू ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 23 रन बना लिए हैं। एक सफलता भारत को जरूर मिली है, मगर उसके बाद से ऑस्ट्रेलियाई इन दोनों बल्लेबाजों ने किसी तरह दबाव नहीं कबूला, आक्रमण कर रहे हैं भारतीय गेंदबाजी के ऊपर।
3: हम स्ट्रोक्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
5: जो कि तीन रन पर खेल अनुभवों को और लिचफील्ड जो कि आउट होने के बाद आई है
3: और मुझे प्रसन्नता
5: 12 पर बल्लेबाजी कर रही है। यूपीआई
3: को सेशल में लागू करने के लिए उन्होंने एमओयू किया।
5: रेणुका सिंह अपने नए ओवर की शुरुआत करती हुई
0: He said the India Sessions partnership in the health sector has stood the test of time. He said MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Sessions. Addressing the gathering, Sessions President Harmini said maritime security in the Indian Ocean region remains central to bilateral ties, with the two countries reaffirming the commitment to counter piracy, drug trafficking, illegal fishing and cross-border crime.
3: A particularly significant milestone is the groundbreaking
5: outswing gain back foot par jaakar is baar drive kiya magar deep point ke sthan par Kranti God hai
3: this india assisted project will
5: have australia ka score
3: strengthening our capacity building my deepest gratitude to prime minister modi for this transformative initiative
5: apni gendon ko off stump aur off stump ke bahar
0: prime minister modi was conferred with the guardian of the blue horizon highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development the session president conferred the prestigious honor on prime minister modi the distinction has been awarded to prime minister modi in recognition of his green leadership his efforts towards advancing the interests of developing countries and his long-standing commitment to promoting the blue economy, climate action, sustainable management of ocean resources, and the developmental aspirations of small island developing states. Prime Minister Modi dedicated the honor to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Sessions. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, both India and Sessions seek a world where development is more inclusive and international institutions reflect contemporary realities, reaffirming their commitment to advancing the interests of the global south.
3: Sessions and India both seek
5: और ये जरूरी दबाव बनाने के लिए और सफलताएं
3: मोर इंक्लूसिव वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑस्ट्रेलियाई
5: बल्लेबाजों का प्रयास रहेगा लीडर्स घेरे के अंदर हैं ज्यादा फायदा उठाया जाए आक्रमण किया जाए उसी के प्रयास में कदमों का इस्तेमाल किया था लिचफील्ड ने इस बार लेकिन सटीक अनुशासित गेंदबाजी रेणुका सिंह
0: मिस्टर मोदी सेड दैट इंडियास गुडलैंड आउटस्विंग गेम द आईडिया ऑफ सीधे बल्ले से ड्राइव किया था व्हिच रिकॉग्नाइजेस दैट आवर फ्यूचर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड कोई इंटरडिपेंडेंट
3: Our vision Australia 24 एक विकेट पर 2.5 ओवर के बाद इस ओवर की आखिरी गेंद अच्छा ओवर भारत के लिहाज से सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन
5: एक रन आया दिस ओवर द विकेट की गेंद इस बार इसे फाइन लेग की तरफ स्कूप करना चाहती थी मगर गति परिवर्तन रेणुका सिंह द्वारा और कोई रन नहीं डॉट बॉल अच्छा ओवर तीन ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 24 एक विकेट के नुकसान पर
6: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना
7: नहीं मुझे लगा तुम लाए हो
6: तुम हो ही भूल
7: कर भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
8: ली जानिए आभा के बारे
7: में
8: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहे और जहां चाहे ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर आज ही आभा डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7
0: सिंह पीयूष गोयल मनोहर लाल
1: फॉर द फर्स्ट time in the match after that great comeback by Renuka Singh with just a solitary run in that over. She has bowled two overs, 12 runs and a wicket of Georgia ball. Australians are now 24 for one, needing another 147 runs of those 117.

फिल्म संगीत का आगाज मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल एक मंदिर से। गीत के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और संगीत बनाया है शंकर जयकिशन ने।

0: फिल्म पारसमणि में मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। रात के 11 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी

0: विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles president conferred the prestigious honor on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honor to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development and blue economy. India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent